नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चान्रतम। अर्थात प्रेम से क्रोध को जीते, उत्तम व्यवहार से दुष्ट मनुष्य को जीते, दान से कृपण को जीते और सत्य से झूठ को जीते। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 306। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस श्रृंखला की नवी कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के।

सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से सुनेगा चित्रलोक। सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर। आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 से सुनिएगा रंग तरंग, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से।

सुरीला सफारी, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नग में, 3 बजे दोपहर ये समय होता है सखी सहेली का। इसके अंतर्गत आज के विषय हैं पारिवारिक मिलन समारोह का महत्व, शब्द हमारा, विचार आपके के अंतर्गत विश्वास, साड़ियों का संसार, मेखला चादर आसाम, व्यंजन साबुत अनाज के व्यंजन, संवादक हैं सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान सुनिएगा, कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आपको सुनाएंगे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण। तराने नए पुराने शाम 5:30 से झरोखा सुनेगा, शाम में 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा, शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात 8 बजे से आपको सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत प्रहसन मोहब्बत का इम्तिहान, लेखन और निर्देशन मदन मोहन खन्ना का, रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 9 बजे से, रात 9:30 सुनिएगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अक्षय कुमार पर। रात 10 बजे से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 9 आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की।

अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 306।

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तरकस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में सभी सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की बात हो रही है, हमने इसकी आलाप की कुछ जो खासियत है उसके बारे में सुना है।
2: जयन जी, वैसे भी देखा जाए तो कौन सा भी राग होने दो, आलाप ये राग का एक प्राण है।
1: जी जी,
2: राग की पहचान होती है तो आलाप से होती है। तो आलाप का जो विस्तार है वो हमारे घराने में बहुत, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी।
2: आलाप से राग का विस्तार करना किराने घराने में गायन की शुरुआत एक शांत, धीमे और विस्तृत आलाप से होती है।
1: अच्छा।
2: इससे राग का स्वरूप धीरे धीरे श्रोता के सामने प्रकट हो जाता है। यानी विलंबित लय होने के कारण वो आलाप प्रधानता, यानी एक एक आलाप, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक एक एक स्वर पर जाके, यानी विलंबित आलाप, लय भी विलंबित।
1: जी जी जी।
2: आलाप तो आराम से होते हैं, आलाप को हम तान का ये नहीं दे सकते, तो जिससे प्रत्येक स्वर को पूरा समय और महत्व मिल सके, ऐसा ही विलंबित लय लेकर ये आलाप आगे जाता है। इस घराने में तानों की अपेक्षा स्वरों की शुद्धता, मधुरता और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है।
1: जी।
2: और अगर तान भी अच्छी होनी है तो आलाप अच्छा होना है। आलाप अच्छा होना है तो सुर को पक्का करना है।
1: जी।
2: सुर पक्का है, एक स्वर पक्का हुआ तो दूसरे स्वर जब हम जाते हैं, दूसरा स्वर अगर पक्का हुआ तो ही उसके आगे का स्वर पक्का लगेगा, नहीं तो आगे का स्वर नहीं लगेगा।
1: अच्छा।
2: मींड और सूक्ष्म श्रुति का प्रयोग जो हम करते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक, अत्यंत कोमल और प्रवाहपूर्ण मींड हमारे गायकी में ली जाती है। तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग करके राग का भाव उभारा जाता है। इसीलिए इसकी जो कलात्मक तरह है ना, ये तो किराना घराना में एक विशेषता है। एक एक स्वर का विस्तार करना, प्रत्येक स्वर का ठहर ठहर कर उसकी पूरी मधुरता गहराई के साथ प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही स्वर विस्तार की विशेषता हम मानते हैं और उसे माना जाता है। आलाप का उद्देश्य केवल स्वर दिखाना नहीं, बल्कि राग के भाव, रस और वातावरण को श्रोता तक पहुंचाना होता है।
1: जी।
2: हम कहते हैं कि स्वर जो है उसको अर्थ हम नहीं दे सकते, लेकिन राग में जो वादी संवादी रहते हैं, राग का जो रस रहता है, राग का जो हम करुण रस, भक्ति रस रहता है, इसके ऊपर राग का स्वभाव होता है।
1: जी, जी, जी।
2: वही स्वभाव के द्वारा हर एक स्वर में राग के वो प्रकट होता है।
1: अच्छा।

0: इसीलिए मीनिंगफुलनेस जो है ना राग में, शब्द का है ही लेकिन स्वर का भी मीनिंग होता है। धीरे धीरे विकास करके राग का विकास क्रमबद्ध हम करते हैं, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक की ओर बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है।
1: जी
0: तो फिर संयमित तानों का भी प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, आलाप के बाद जब तान आती है ना, परंतु राग की गरिमा और
1: जी
0: स्वर सौंदर्य को बनाए रखते हुए ये तान हम प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए आप ये आलाप प्रधान शैली
1: जी
0: और आलाप प्रधान शैली और उसमें जो शांत रहने के एक तरीका है
1: जी
0: वो सुन के ही उसके महसूस कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: हमारे किराना घराने के और भी बहुत अच्छा कलाकार है कैवल्य कुमार गुरव। कैवल्य कुमार गुरव जी का गाना जो है
1: जी
0: उसमें ये आलाप प्रधानता बहुत ही अच्छी तरह से वो करते हैं। उनका अभोगी थोड़ा सुनेंगे।

0: अभोगी राग है तो स्वर भी बहुत प्यारे है अभोगी के, और एक बहुत अच्छा गाना है, तू फिक्र को धुएं में
1: मैं
0: उड़ा
1: जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
2: मैं जिंदगी

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन

0: सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में आन फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में आन फिल्म से। और आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस फिल्म के निर्देशक कौन है, याद आ गया होगा। जी हाँ श्रोताओं, आज है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब का जन्मदिवस, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको महबूब खान साहब की फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। इतने प्यारे प्यारे फिल्म बनाए महबूब खान साहब ने कि दिल कह उठता है हम आज कहीं दिल खो बैठे। अंदाज़ फिल्म से ये गाना मुकेश की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद की है तर्ज।

बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में अनमोल घड़ी फिल्म का गाना। तनवीर नकवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मदर इंडिया फिल्म का गाना। शकील बदायूनी है गीतकार और संगीतकार है नौशाद।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में, शब्द हैं शकील बदायनी के और तर्ज बनाई है नौशाद ने, फिल्म का नाम अनोखी अदा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फकीरा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार और संगीतकार हैं रविन्द्र जैन।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी ना कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म का गाना। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और सपन चक्रवर्ती का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम जमीर।

0: हमारी अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दीवार फिल्म से, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में चुपके चुपके इस फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए।

0: कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलिंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाब अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह

0: बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
5: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।

0: 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सवालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सवालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंकवादी मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सवालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन की कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता

चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं, सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहां किसी की मदद कर सकते हैं वह जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में।

फिर एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में। किसी का सफर लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं, उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

जाते सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा मुसाफिर

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। चित्रलोक इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रिली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में पैडमैन फिल्म के गाने के साथ। कौशल मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी अरिजीत सिंह की आवाज में पैडमैन फिल्म के गाने के साथ, और आप समझ ही गए होंगे आज है हरदिल अजीज अभिनेता अक्षय कुमार जी का जन्मदिवस। हम अक्षय कुमार जी को समस्त विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं जीवित शरदः शतम्। और उनकी ही फिल्म बेवफा का गाना आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में समीर के बोल और नदीम श्रवण की है तर्ज।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पटियाला हाउस फिल्म का गाना। आवाजें हैं सूरज जगन और एलिसा मेंडोंसा की। अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रकीब आलम का लिखा और देवी श्री प्रसाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है जावेद अली की, फिल्म का नाम पुष्पा।

दोस्तों लीजिए अब सुनिए दिव्या कुमार और प्रगति जोशी की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भवेश जोशी सुपर हीरो।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा और हमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की। फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पालोमी की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। गीतकार हैं तनिष्क बागची और हरबी सहारा और संगीत दिया है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपेले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: नो निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपया इनाम। सुनो।

में आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में

कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

इस फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में एतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके

साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओ, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माई गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार

के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माय गॉड 2।

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

0: चाहिए।
1: अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापता गन, बेगुसराय, इश्क में मर जावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान

0: ये हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी,
0: जी
1: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ, और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन
0: जी
1: ऑनर।
0: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
1: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम
0: जी
1: लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला
0: जी
1: होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो
0: जी
1: उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता
0: जी
1: है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
0: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी,
1: हाँ
0: लेकिन जब ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
1: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा, और मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की, यू नो, नकल उतारा करता था अपने
0: जी
1: रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के जो एक्टर्स थे हमारे, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप, यू नो, इसकी इसकी इसकी आवाज़ निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज़ निकाल के
0: जी
1: दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया, और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको,
0: जी
1: दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
0: जी तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम
1: हाँ, बेस
0: करते
1: बन
0: करते।
1: गया,
0: जी
1: एब्सोल्युटली।
0: तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो
1: हाँ
0: मुंबई का
1: हाँ
0: जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी? किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम
0: जी
1: लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए,
0: जी
1: हम बिल्कुल बेघर हो गए थे, यू नो, उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ, यू नो, बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया, कि
0: अच्छा
1: मुंबई इसलिए आऊँगा
0: जी
1: कि नौकरी भी करूँगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना ज़रूर मैं ट्राई करना चाहूँगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती
0: जी
1: है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज़ की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित, मुल्क की अगर हम
1: हाँ,
0: बात करें?
1: मुल्क था और वो
0: जी
1: पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, यू नो, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में।

0: तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको यू नो गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया,
1: जी
0: मुझे अच्छे शोज मिलते गए और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस
1: जी
0: गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने ही सिखाया मुझे।
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
1: जीना या मरना या
0: जी हाँ,
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं।
1: जी
0: जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए,
1: जी
0: कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है
1: जी
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद, जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो
0: जी
1: उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा निभा

0: जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो।
1: जी
0: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया, और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है,
1: जी
0: अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता
1: जी
0: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और
1: जी
0: आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
1: जी वो स्वीकार
0: सिर्फ
1: करना बहुत
0: सिर्फ
1: जरूरी है।
0: उनकी वजह से। मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान, मैं
1: जी
0: मानता हूँ, यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ही ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको और
0: बिल्कुल
1: स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी
0: बिल्कुल,
1: बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है,
1: जी
0: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा।
1: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ,
1: जी
0: और मैं उनके मंदिर जाया करता था, और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था,
1: जी
0: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीज़ों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
1: आनंद फिल्म से
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या-क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए।
0: जी
1: इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है,
0: जी
1: जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं यहाँ, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पर आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से ज़रूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त
0: जी
1: आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ,
0: जी
1: तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
0: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
1: मेरा
0: कितने
1: जो
0: घंटों का?
1: पॉपुलर शो था मायका, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
0: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें
1: हाँ, जिसमें
0: ब्लास्ट के थ्रू इनका।
1: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे
0: जी
1: और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर।
0: जी
1: और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे, मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूं। तो ये
0: और तब तक
1: बहुत,
0: बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए
1: फिर
0: वहां पर
1: जब
0: शूट।
1: ये 2 दिन मैं सोया हूं, उसके बाद वापस
0: जी
1: से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
0: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है। तो
1: सारी
0: कोई
1: यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स
0: हाँ
1: अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
0: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
1: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
0: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता
1: जी
0: नहीं
1: हाँ
0: है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी।
1: जी
0: जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है अपना, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसा ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को,
1: जी
0: क्योंकि कई
1: बिल्कुल,
0: बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और यही
0: जी
1: चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं,
0: जी
1: क्योंकि

0: मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है।
1: जी
0: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना ज़रूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया।
1: जी
0: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग ख़राब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आपका दिमाग भटक सकता है।
1: जी
0: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से बड़ा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
1: जी
0: वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि
1: जी
0: आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
1: खुश होके तुरंत कि हमें ये
0: क्लब्स
1: सब
0: में
1: करना है।
0: जाते हुए या
1: जी
0: पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीज़ें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं। उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
1: कल क्या
0: बहुत
1: होगा कब
0: जरूरी
1: पूरा। हाँ
0: चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी, और जैसे कि अब इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर
1: जी
0: लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
1: जी
0: बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो
1: जी
0: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है।
1: जी
0: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
1: जी
0: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
1: जी
0: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानी को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया
1: वर्टिकल रख
0: जाता है,
1: दिया
0: कभी
1: जाता है।
0: हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है,
1: जी
0: लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार
1: जी
0: मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविज़न शोज़ की, और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहाँ भी हमारे इंडियन टेलीविज़न शोज़ टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
1: जी
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी
1: जी
0: मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज़ हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो US की काफ़ी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें।
1: जी
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th of August को वो UK में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं
1: जी
0: चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मज़े की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पास ही में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
1: जी
0: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है
1: जी
0: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहाँ गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
1: जी
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन
1: पहुंच गए
0: एक्टर वहां
1: जी
0: कैसे हूँ। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा, और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब
1: यहाँ भी
0: यहाँ
1: फैन
0: के
1: फॉलोइंग है
0: लोकल लोग तुम्हें
1: जी
0: पहचान रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बींग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक
1: जी
0: इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा,
1: जी
0: मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली,
1: जी
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है, तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ।
1: जी
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं,

0: And he was the part of the show.
1: जी
0: He was the part of the show. He was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मैं फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ. और मैं गया और मैं सीधा उनके वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा. एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम. मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर.
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा. लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के.
1: तो वही सुन लेते हैं
0: बिल्कुल.
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची,
0: बावर्ची
1: बावर्ची,
0: तो बस
1: एनी डे। मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज़ में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागबान
1: अपने
0: से पहले यही देखी जाती
1: हाँ,
0: थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग
0: स्टार
1: स्टार,
0: जी, उनका एक अलग ही चार्म था।
1: अलग ही चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं
1: बिल्कुल,
0: कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब,

0: ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
1: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
0: हाँ,
1: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
0: ये
1: जा
0: सब
1: सकता है।
0: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
1: जी,
0: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
1: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है। तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
0: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
1: जी
0: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
1: जी
0: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रहना है,
1: जी
0: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
1: जी
0: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत
1: जी
0: रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: जी
0: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो
1: विनीत रैना
0: विनीत
1: बन
0: रैना
1: गया।
0: है
1: जी
0: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
1: जी
0: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
1: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। शायद इतने साल से
0: देखिए,
1: काम
0: हमेशा
1: करते
0: तो
1: करते आपको ये
0: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है,
1: अच्छा
0: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहाँ पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
1: जी
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम ख़त्म किया, सीन पूरा ख़त्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम ख़त्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और
1: जी
0: ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
1: एक
0: मेंटेन करना
1: बैलेंस,
0: आसान रहता है।
1: जी और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
0: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है,
0: इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
1: बिल्कुल।
0: चांदनी

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता
0: क्रश
1: है
0: जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहाँ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी,
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता
1: हाँ
0: है गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूँ कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का, मुझे लगता है, सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
0: जी
1: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
0: जी
1: उन्होंने ही डिस्को

0: और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी,
1: जी
0: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज़ किया और मैं गया,
1: जी
0: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है। और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
1: चैन
0: कहाँ
1: का
0: रे
1: रहे
0: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूँगा।
1: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हम।
0: बिल्कुल

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हमारे अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। तो आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आबिदा परवीन की आवाज से। कलाम है जिगर मुरादाबादी का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये कव्वाली आप सुन रहे थे यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में। विविध भारती से ये है प्रोग्राम रंग तरंग।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये थी मुकेश की आवाज। ये हनुमान अंश फिल्म का गीत है विशाल चतुर्वेदी के स्वर में। गीत और संगीत विशाल चतुर्वेदी का है।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वरों में ये था राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का था और फिल्म ये एक फिल्मी रचना थी। फिल्म का नाम था मीनार।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कम बैक सून।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहाँ हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई।

0: चली छुक छुक करती रे चली।
1: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
0: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
2: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
0: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
2: तो चलो
0: रेल चली भाई रेल चली,
2: एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
0: हाँ दादाजी हम भी थक गए।
2: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
0: अच्छा
2: अच्छा अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
0: दादाजी मैंने देखी है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
2: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
0: अरे वाह,
2: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
0: हाँ आज तुम बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
2: अरे ओ रामू भैया कहाँ जा रहे हो? अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को। अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
2: बैठो बैठो जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों, जल्दी करो गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो
0: रानी, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
2: हाँ हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
0: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
2: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
0: अच्छा तो ये बात है।
2: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
0: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
2: हाँ बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
2: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा, अरे हाँ रेलगाड़ी तो चल रही।

0: दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
0: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
2: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक।

वे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है। गांव गांव और शहर शहर

को सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है, गांव गांव और शहर

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये
3: रुस्तम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल थे, आरको का संगीत था।

0: हॉलीडे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: पैडमैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। कौसर मुनीर के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। वो लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी विजू शाह ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे ये गाना देसी बॉयज फिल्म से। मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आप जान चुके होंगे कि इस कार्यक्रम में एक हम इबारत पोस्ट करते हैं और इबारत से आपको शब्द चुनने होते हैं, शब्दों से गाने। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत पढ़कर सुना दे रहे हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbsmumbai। अब हम इबारत आप तक पहुंचा रहे हैं। इस इबारत से आपको चुनने हैं गाने, वही गाने हम आप तक पहुंचाएंगे। ये दुनिया रंग बिरंगी है, कहीं धूप की सुनहरी चादर तो कहीं उदासी की धुंध में लिपटी हुई। उसने भी दुनिया के कई रंग देखे थे। कभी जिंदगी उसकी मुट्ठी में से रेत सी फिसल जाती, तो कभी कोई उम्मीद हथेली पर ओस की बूंद बन ठहर जाती। वो सपनों का गट्ठर लिए जा रही थी, पर सपने अपने कब होते हैं। उसके कदम बरसों से रुके रुके थे, जैसे किसी अनकही पुकार का इंतजार कर रहे हों। फिर एक दिन उसने अपने भीतर झांका और जाने किस भरोसे ने उसके पांवों में फिर से गति भर दी। वो चल पड़ी, रास्ते में एक माली मिला। उसने मुस्कुरा कर कहा, फूलों को खिलने के लिए मौसम का इंतजार नहीं, जड़ों में विश्वास चाहिए। उसने देखा, पास पड़ा एक साधारण सा पत्थर भी सुबह की किरणों से रोशन हो उठा था। उसे लगा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, ठोकरों से तराशी जाए तो भीतर का उजाला बाहर आने लगता है। जमाना सवाल करता रहा, कहाँ जाओगी, लोग क्या कहेंगे। वो मुस्कुराई, 100 बार जन्म लूंगी तो 100 बार अपनी राह चुनूंगी। दुनिया वाले पूछेंगे सवाल, मैं हर बार अपने कदमों से जवाब दूंगी। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ रिश्ते पीछे छूटे, मगर उसका हौसला सलामत रहा। वो चलती रही, क्योंकि उसे अब मालूम था, राही वही नहीं जो राह पाए, राही वो है जो अपने रुके कदमों से राह बना ले। तो दोस्तों, बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। देखिए, कहीं आपके और हमारे गाने एक से तो नहीं है। बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणियां लिख डाली हैं, गानों के बोल लिखे हैं, और ये जो पहला गाना सुनवा रहे हैं ये भी श्रोताओं की ओर से आया है। तो बताइए जरा, कौन है इसमें हीरो और कौन है हीरोइन। बीच बीच में पहेलियां भी बुझाएंगे, पहेलियों के जवाब भी आपको देने हैं। बूझिए जरा, हीरो हीरोइन का नाम फिल्म महल, और इबारत के कौन से शब्द आ रहे हैं इस गाने में, जरा ये भी तो बताइएगा।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फिल्म थी महल, और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और सही जवाब दिया, देव आनंद और आशा पारेख। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द चयन किए हैं और गानों के बोल भी लिखे, बहुत सारे गाने आपके हमारी प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन और भी गाने आप सुझाते चलिए। अगर आप में से बहुत सारे श्रोताओं की ओर से एक ही गाना आएगा तो वो गाना हम जरूर सुनवाएंगे, और हम चाह रहे हैं कि आप गाने सुझाइए, वही गाना हम आप तक पहुंचाएं, अपनी प्लेलिस्ट वाले गाने को हम हटा देंगे। एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, संसार की हर शय का इतना फसाना, रुके रुके से कदम खिलते हैं गुल, यहाँ बदल जाए अगर माली, ये दुनिया वाले पूछेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। भाई और भी लंबी फेहरिस्त गानों की इन्होंने बताई है, और आज की इबारत के हिसाब से बिल्कुल सही बताई है इन्होंने गानों की फेहरिस्त। और एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया कदम फूल रोशन लोग सौ बार रिश्ते, ये हो सकते हैं आज के गाने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। फिल्म दोस्ती के इस गाने में जीवन का फलसफा मजरूह दादा ने लिखा था, जो शायद सबकी समझ से बाहर है, लेकिन ये सच्चाई है। भले मंजिल दूर सही, लेकिन सुख दुख सहते हमें बढ़ते जाना चाहिए। भले ही रास्ते में कांटे और पत्थर सब मिलते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है और एक दिन उस मंजिल को पाना ही है। भाई आपने भी काफी खूबसूरती से इबारत पिरोया है, तो हम चाहते हैं कि आपके माफ कीजिएगा, आपके जहन में अगर कोई बात आती है तो जरूर लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल जरा सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और ये सोचिए कि यही गाना आपने सोचा था कि अभी हम सुनवाएंगे, या फिर कोई और गाना आपके जहन में आ रहा है। वैसे बहुत सारे शब्द आज की इबारत में है, सवाल जवाब दुनिया है, और रुकने की बात है, आगे बढ़ने की बात है, और सलामत रहने की बात है, कितनी सारी बातें हैं। तो आप जरा गाने हमें सुझाते चलिए और पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। फिलहाल बताइए ये गाना आपने सोचा था और फिल्म का नाम बूझिए।

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, फिल्म का नाम उस्तादों के उस्ताद। और कुछ श्रोताओं ने फिल्म का नाम गलत भी पूछा है, जबकि ये गाना तो अक्सर विविध भारती से आप सुनते ही रहते हैं और वैसे भी सुनते होंगे, आपके संग्रह में ये गाना ज़रूर होगा। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि चाहतों से भरी जिंदगी में सपने आरामगाह की तरह होते हैं, जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है जिंदगी सपने में अपना सुकून खोज ही लेती है। ये अलग बात है कि सपने कभी अपने नहीं होते। वैसे भी जीवन किसी और का लिखा हुआ उत्तर पत्र नहीं है, एक खाली पन्ना है जिस पर हर निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साहस एक अध्याय और हर एक भूल सबक है, इसलिए जब कभी रास्ता धुंधला लगे तो किसी कहने सुनने का इंतजार मत करो, एक छोटा सा कदम उठाना, क्योंकि रास्ते चलने वालों के नीचे बनते हैं, खड़े रहने वालों के सामने नहीं। क्या बात लिखी है भाई, आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कौन सा वो लम्हा था जब आपके जीवन में रुकावट आई, पढ़ाई के दिनों में, नौकरी के दिनों में और अपनी कामयाबी हासिल करने के दिनों में। हर किसी की जिंदगी में, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और कभी न कभी ऐसा लम्हा आता है जब हम टूटने लगते हैं, हारने लगते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति होती है, कोई ऐसी किसी की बात सामने आती है, कोई ऐसा गाना सुन लेते हैं जब हमारे भीतर हौसले का संचार होता है। तो उस लम्हे के बारे में बताइए कि कौन सा वो क्षण था जब आप अपने खुद ही से हारने लगे और लगा कि बस अब तो जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। अपने अनुभव साझा कीजिए, साथ में पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब आपको सुनवा रहे हैं मौसम फिल्म का गाना, आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम। बहुत आसान सवाल है वैसे, इबारत के कौन से शब्द इसमें शामिल हो रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग हीरो हीरोइन का नाम नहीं पूछ सकते, बताएं गीतकार और संगीतकार का नाम।

कई बार हमारे कदम रुक जाते हैं जब हम थक जाते हैं, लेकिन भीतर एक बात आती है कि हम फिर चल पड़ते हैं। ऐसा लम्हा आपके जीवन में कब आया?

रुके रुके से कदम रुके बार बार चले। ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि ये गीत प्रेम, इंतजार और अधूरेपन की एक खूबसूरत दास्तां है। गुलजार साहब के शब्द दिल को छू लेते हैं। संगीत मदन मोहन का बहुत ही धीमा और सुरीला है। ये गाने के उदास और तनाव माहौल को पूरी तरह से उभारता है। लता मंगेशकर की आवाज का ठहराव कमाल का है। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं इस तरह की बातें और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अरे वाह, चयनित गीतों में दूसरा गीत सुन रहे हैं। और कई श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारी लिस्ट के ये गाने सुनाए जा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, ये गाना आना चाहिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये सिर्फ एक गीत की पंक्तियां नहीं है, ये मेरी आत्मा का वो उजाला है जिसने मुझे हर बार अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला है। जब भी दुनिया ने कहा कि सब खत्म हो गया, तब इस गीत ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। दरअसल ये गीत ऐसे ही है, विविध भारती से जो गाने आप सुनते हैं अक्सर हमारे सुख दुख के साथी हो जाते हैं। कई बार पढ़ाई के दिनों में, छात्र जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लगता है कि अब क्या होगा। इम्तिहान जब करीब होता है और जब रिजल्ट आता है, परिणाम घोषित होता है, तब दिल की धड़कनें बढ़ी होती हैं। जब आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तब क्या हाल होता है, लगता है कि बस अब तो खत्म, टूटन सी होती है। तो ऐसे जो लम्हात आपके जीवन में आए हैं, उन्हें आप साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और साथ में हमारी टिप्पणियों के जवाब भी दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दूर गगन की छाव में फिल्म का गाना, राही तो रुक मत जाना। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने, ये वाला गाना सुनवाए। गानों की लंबी फेहरिस्त भेज रहे हैं हमारे श्रोता, तो चलिए अब यही गाना सुन लिया जाए, दूर गगन की छाव में। आपको बूझना है संगीतकार का नाम और साथ में गीतकार का नाम। आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।

कई श्रोता इस गाने में भ्रमित हो गए। हेमंत कुमार की आवाज, किशोर कुमार का संगीत, लेकिन कई श्रोताओं ने उल्टा कह दिया, किशोर कुमार की आवाज, हेमंत कुमार का संगीत। तो भाई, शैलेंद्र की रचना थी हेमंत कुमार की आवाज, किशोर कुमार का संगीत, फिल्म दूर गगन की छांव में। और ये गाना जब बहुत आप परेशान होते हैं तो दुख पर जैसे फाहे का काम करता है, जैसे औषधि का काम करता है, और हम सबके मन में उत्साह का संचार हो जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने लगभग इस तरह की बात लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे गीत 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद का बेहद प्रसिद्ध और रूहानी गाना है। हमने जो पहले गाना सुनवाया उसके लिए इन्होंने ये लिखा है। और मोहम्मद रफी ने इसे अपनी जादुई आवाज से सजाया। संगीतकार का संगीत बहुत ही सुरीला है और रफी साहब की आवाज जैसे इस गीत की आत्मा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अजीब से लोगों से मिल जाते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन जिन लोगों के राह में ऐसे लोग आते हैं उनके भीतर जीतने का हौसला भी होता है। वही तो बादलों को चीरते हुए पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी कामयाबी तक पहुंच ही जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी कामयाबी में कौन सा ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा कि आपको कामयाबी से पीछे हटना पड़ रहा है, या कोई ऐसा रोड़ा, ऐसा कोई पत्थर आ गया जिसके कारण आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो ऐसी कोई बात आप साझा कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव भी साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब आपसे हम कई सवाल पूछ रहे हैं। आपको पूछना है निर्देशक का नाम, आपको पूछना है निर्माता का नाम,

बूझना है कलाकारों के नाम। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, इसमें कौन सा शब्द इबारत वाला आता है ये भी बताइए। कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे? दोहरा देते हैं सवाल, बूझिए निर्देशक और निर्माता का नाम, कलाकारों के नाम, और बूझिए इबारत में कौन सा शब्द आया है जिसके लिए ये गाना सुनवाया है। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, और इस शब्द के बहुत कम गाने हैं।

भाई सभी ने लिखा है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि माली शब्द वाला गाना है, इबारत में माली है कि माली ने कहा कि घबराना नहीं, इस तरह की बात है। और उसमें एक शब्द और आता है पत्थर और शाम, तो इससे और सुनहरा शब्द, सुनहरी शाम, तो इस पर कोई गाना आपको याद आ रहा है तो जरा बताइए, क्योंकि आगे हम वो गाना भी सुनवाना चाहते हैं और आप जो सुनना चाहते हैं हम चाहते हैं वही सुनवाना, तो इसलिए आप ही लिखिए अगला गाना कि कौन सा हम सुनवाएं। और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन निर्माता निर्देशक का नाम बहुत कम श्रोताओं की ओर से आया है। शाहिद लतीफ निर्देशक और गुरुदत्त प्रोड्यूसर थे। निर्माता धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा इस फिल्म में कलाकार हैं। हमारे सभी श्रोताओं ने ये सही

बूझा है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म गुरुदत्त साहब के चले जाने के बाद रिलीज हुई थी और धर्मेंद्र साहब ने इसमें काफी मदद की थी। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि इसमें पत्थर शब्द भी आया है और माली शब्द भी आया है। फिर फूलों के लिए बहुत सारे गाने हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फूलों की बात भी है और शाम और सुनहरी शाम से जुड़ा हुआ कोई गाना आपको याद आ रहा है, मतलब जिसमें सुनहरा शब्द हो, धूप हो और पत्थर हो, वो गाना भी बताइए। इबारत में ये शब्द भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तकरीबन 10 साल पहले जब मेरे पति देव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी। कहीं कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे और वो हमेशा एक ही गाना गाते थे, नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वो था जो मेरी रुकी हुई जिंदगी उस गाने से आज चल पड़ी। आज जब भी मैं उसे उस गाने को सुनती हूं तो मुझे वो वाक्या याद आ जाता है। और सचमुच गाने से आपको सहारा भी मिलता है। कई बार हम बहुत उदास बैठे हों, यूं ही अकेलेपन के एहसासात से घिरे हुए हों, तो कोई गाना हम सुन लेते हैं तो चेहरे पर मुस्कान तिर आती है। कोई रूमानी सा गाना, कोई इंस्पायर करने वाला प्रेरणादायक गाना तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कोई गाने आपके जहन में आ रहे हैं तो जरा बताइए। एक श्रोता ने लिखा है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, सुख है एक छांव ढलती आती जाती है। फिल्म दोस्ती के इस गाने में जीवन का फलसफा है और भी बहुत कुछ है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी एक पुराने रेडियो पर बजते किसी मधुर गीत की तरह लगती है जो हमें अतीत की सुनहरी यादों में ले जाती है। कभी ये एक नए सफर की तरह होती है जहां अगला मोड़ अनजाना पर रोमांच से भरा होता है। इसमें सिर्फ खुशियां और सफलताएं ही शामिल होती हैं। इसमें कभी कभी दिल का टूटना, हार मान लेने का एहसास होता है। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं कि अगला मोड़ अनजाना, इस पर मेरे जहन में एक बात आ रही है। जरा बताइए कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन के दिन होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं कि ये कौन सी वाली गली से हमें जाना है। और एक समय था जब गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास फोन नहीं था, माता पिता का बताया हुआ ही रास्ता होता था, भाई बहनों का बताया हुआ रास्ता होता था कि ऐसे सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाहिने मुड़ना, फिर सीधे जाना, वहां पर वो दुकान आएगी, उस दुकान से ये सामान ले आना, या फलाने जी का घर होगा, उनके घर जाके ये संदेशा देना। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ आप रास्ता भूल गए हों? कभी तेज बारिश हो जाती थी और चारों ओर से पानी ही पानी, बूंदों की बौछार, रास्ता सूझता नहीं था, तो ऐसे में क्या करते थे? तो ये जमाना अब अलग है। एक जमाना ऐसा था जब कोई आपको बताने वाला मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक नहीं होता था। वो दिन याद कीजिए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम बूझिए। कौन सी है फिल्म ये?

बहुत सारे श्रोता हमारे बहुत सारे गाने सुझा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है एक अंधेरा लाख सितारे फिल्म आखिर क्यों, और एक श्रोता लिख रहे हैं एक हंसी शाम को दिल में राख हो गया फिल्म दुल्हन एक रात की, और एक श्रोता ने लिखा है कि एक सुनहरी शाम थी सायरा बानो जॉय मुखर्जी की फिल्म आओ प्यार करें, और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है ये शाम की तन्हाई है ऐसे में तेरा गम, और एक आगे इन्होंने लिखा पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बारिश का आनंद लेते रहिए, गाने सुनते रहिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम लिखा है, और हमारे एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि फिल्म बाहर है फिर भी आएंगी का निर्माण गुरुदत्त ने शुरू किया था, पर उनके पात्र को धर्मेंद्र से रिप्लेस करवाकर आत्माराम ने पूरा किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले की बात है, और एक इन्होंने यात्रा साझा की है, बहुत लंबी सी टिप्पणी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने दुनिया पर गाने लिखे हैं, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, रंग बिरंगी ये दुनिया रंग बिरंगी बाबा, और तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार 100 बार जन्म लेंगे, ये गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया एक मेला है, उसमें खुशी गम आशा निराशा की बहुत सारी राहें नजर आती हैं, इस मोहजाल से भ्रमित मत होना, खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सपने सच करते हुए जीवन पथ पर चलते जाना, हे राही आत्मविश्वास से चलते जाना। और अब दुनिया की बात है तो चलिए दुनिया वाला ही गाना एक और सुन लेते हैं। आपके जहन में इस समय सलामत रहने वाली कौन सी बात और कौन सा गाना आ रहा है बताइएगा, तो हम ये दुनिया के बाद दुनिया वाले गाने के बाद वो गाना सुनवाएंगे सलामत। फिलहाल ये दुनिया, दुनिया वालों से दूर फिल्म का नाम आपको पूछना है।

जबक फिल्म का गाना था। हमारे श्रोताओं ने जवाब इसका सही दिया, कम श्रोताओं को जवाब शायद पता था इसके बारे में, कम जवाब आए हैं। अब दुनिया और दुनिया से जुड़ा हुआ एक गाना और आपको सुनवा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था सलामत शब्द जो इबारत में है उससे जुड़ा हुआ गाना आप याद कीजिए, तब तक हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बहू बेगम। इसकी भी इस गाने का भी जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा है इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखा है, जरा आप भी बताइए। फिल्म बहू बेगम, और बताइए किस हीरोइन पर यह गाना फिल्माया गया है, और साथ में बूझे गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म बहू बेगम।

बहू बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। और पूछा था हमने हीरोइन का नाम, सभी ने बताया सही बिल्कुल, मीना कुमारी और हीरो प्रदीप कुमार। और अब सलामत रहने के लिए तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने सुझाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे जरा पूछ लें कि कई श्रोताओं ने खामोशी फिल्म का गाना चुना है, वो शाम कुछ अजीब थी, और शाम के बहुत सारे गाने सुझाए हैं, तो आप सभी तय कीजिए कि कौन सा गाना शाम वाला सुनवाएं। अभी फिलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं दुखी इस सोच में कन्फ्यूजन में था कि आगे क्या। मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती के गीत बज रहे थे, उस समय गीत बजा आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड फिल्म का। मैं उत्साह से भर गया और निर्णय लिया कि जॉब ही करना है। क्या बात है भाई, रेडियो विविध भारती आपका किस तरह से साथी होता है, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन तुम्ही से दुनिया दूसरा गाना, अब तो सलामत, फिर फिल्म प्यार ही प्यार के दो शीर्षक गीत में से एक। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सलामत से मुझे सिर्फ एक ही गाना बहुत पसंद है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये गाना सुनाती हूँ और गाती भी हूँ। अपने सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूंगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अभी आपको ये गाना हम नहीं सुनवा रहे, बल्कि ये गाना सुनवा रहे हैं। जरा फिल्म का नाम बूझिए और जल्द बूझिएगा फिल्म का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं इंदिवर, संगीतकार का नाम जरा आप बताइए, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम आपको।

भाई, इस गाने का जिक्र तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था और हमें लगता है कि आपकी और यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट की बात गाने एक हो गए। फिल्म थी पारसमणि और गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आप सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। एक श्रोता ने लिखा है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, जिंदगी के रंग कई रे, मैं राही अनजान राहों का और मेरा नाम अनजाना, रुके रुके से कदम, गाने के बोल बहुत सारे लिखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ये पर्वतों के दायरे, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं गानों के बोल जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब नए मकान में शिफ्ट हुई तो उस समय कॉलोनी काफी वीरान थी, लौटते समय रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हमने आपसे पूछा था कि कभी ऐसा मौका आया जब आप राह भूल गए हों, क्योंकि एक जमाना था जब हम सबका बचपन था तब सोशल मीडिया या गूगल राह दिखाने वाला नहीं था। अब बात सपने वाली रह गई है, तो सपने वाला कौन सा गाना, ये जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और है? अगर कोई और गाना आपके जहन में तो बताइए। फिलहाल बुझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। आपके जहन में सपने वाले और कौन से गाने आए हैं?

नई रोशनी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया और अतिरिक्त जानकारी भी दी है माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, राजकुमार, तनुजा और अनवर हुसैन होते हैं फिल्म में कलाकार। और बहुत सारे श्रोता अगले गाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये गाना सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, गायक का नाम भी जरा बूझिए।

कुछ श्रोताओं ने गायक का नाम बूझ लिया है, आपको पता है तो जरूर बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी।

शबाना आज़मी होती हैं फिल्में, और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। साथ में हीरोइन सुप्रिया पाठक भी हैं, जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में आते हैं। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जो हमने ख़ास सवाल पूछा था, अनूप घोषाल की आवाज़ में ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित बूझा। फिल्म थी मासूम, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की जटिलता को बताया गया था इस फिल्म में, और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कोई गाना सुनवाएं, सिर्फ इतना बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमेशा की तरह ये लाजवाब प्रस्तुति थी, तो हम ये भी आपसे कहते चलें कि हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियां लाजवाब थी। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन के कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहां किसी की मदद कर सकते हैं वह जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में ही।

फिर एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में हमारी

पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में। किसी का सफर लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं, उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए, और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

किसी की न रोली, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर।

0: अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीक्षानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय

0: निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: करना पाए हो गाड़ी वाले।
1: मदर इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आइए अब सुने नौरंग फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। लिखा है इसे भरत ब्यास ने, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
2: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी बोली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में

0: शब्दों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ही सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हालचाल है
1: भाई। हालचाल तो अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मौसम का असर है,
0: सर्दी जुकाम
1: हल्का मौसम का बदलाव आती ही ना सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मिलन समारोह, तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है,
0: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
1: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं, तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर और हम ठीक हो जाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं जहां हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
0: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग है इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती है।
1: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या है ना ये ट्विटर सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं और वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई है,
0: उन्हें ज्यादा लुभाती है।
1: हाँ तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं बिजी हैं, पढ़ रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर,
0: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो, कुछ अलग बातें हो, कुछ उनकी पसंद का खाना हो। हाँ। तो फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं या फिर तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है, उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्त किए, अच्छी तरह से बात की तो वे भी शामिल होंगे।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हरफनमौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें। उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव उलहाना शिकायतें ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाएं और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाएं।
0: जी यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही उसमें।
1: हाँ, ना? उन्हें आना पड़ेगा और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो छोटे बच्चे हैं वहां उनके साथ किस तरह से पेश आए और जो अपने समकक्ष हैं अपने बराबर है उनको किस तरह से वो ट्रीट करें, तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहें कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: और ऐसा होता है जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारा विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
1: विश्वास बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही विश्वास वाला शब्द है ये विश्वास।
0: यानी हमारे मन को

0: अलग ही सुकून मिलता है इस शब्द के साथ,
1: पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता है
0: जी,
1: है
0: ना। और साड़ियों का संसार,
1: मेखला चादर
0: आसाम ले चलेंगे सबको,
1: बिल्कुल बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहाँ की। मेखला चादर जब आप पहनते हैं तो उसके पहनने का तौर तरीका, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके हैं,
0: दो हिस्सों में होती है
1: और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको। और वहाँ का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
0: कमर में लपेटते हैं
1: और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की आपको इमेज देता है
0: जी। और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों की जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
1: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दालें खासतौर से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते हैं।
0: और उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
1: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर नाक घोंसी कोड़ते हैं और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बना के, साबुत दाल के अन्य तरीके के व्यंजन बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे सकते हैं। और अब हम क्या दे सकते हैं,
0: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं
1: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है
0: सुनते हैं
1: ये गीत।

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें, सोनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में,
1: जी
0: और ये जो समारोह है ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है, और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं, और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ तो एक राहत भी मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं, और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहां शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
1: वो
0: कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायत
1: समझने
0: तो कर
1: की
0: देते
1: क्षमता
0: समझ नहीं पाते एक दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
1: और कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार

0: बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में कहा। काश हम सभी ऐसा समझें, सोचें और इस तरह की जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या उसमें जो है ना, जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
1: हम अकेलेपन के आदि हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है, उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी तो चीजों को देना सीखेंगे। जब आप उन्हें बताएंगे कि बेटा आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है, एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम, विश्वास, सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
1: हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, ब्याह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: और अब गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क, या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम

0: मूगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
1: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
0: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
1: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
0: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
1: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ावा भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
0: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
1: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
0: पहन सकती हैं।
1: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
0: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
1: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोनाली, अगर अब आप कहें तो एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना?
1: जी, और एक हमारे सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
1: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ, ये कहती है ना कि मेखला है, यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: पर है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई हूं। सच में, तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है,
1: सरप्राइज गिफ्ट,
0: सरप्राइज गिफ्ट मिल जाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए, हमारे और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, उस पर हम बात करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास पर।
0: उन्हें विश्वास है ना हम पर कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे, और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है।
1: जी, एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति, विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसे रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना

0: अभी
1: बहुत जरूरी है।
0: यस आई कैन डू इट।
1: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं जीवन में। खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना। हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है। बस यही तो विविध भारती की खासियत है, आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करे कि बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
1: बहुत
0: कितना सुंदर उदाहरण देखिए लिखा है,
1: बहुत सुंदर, कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच में जो हमें मेंटेन रखनी होती है। बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता है,
0: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल होता है।
1: तो एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है, वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
0: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना जितना महत्वपूर्ण होता है, उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा, सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है,
0: जीवन का सार लिख दिया है
1: कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास बनाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में, आप एक सेकंड लगाते हैं। कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
0: एक साथ ही कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
1: सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह, सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है, फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
0: और अब गीत सुन लेते हैं।
1: हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
0: कि गीत सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बिठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर। आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिससे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे हम,
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा
1: अरे वाह, अभी उससे
0: लगा।
1: पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं आज
0: जी
1: कार्यक्रम,
0: हाँ
1: और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी हैं।
0: जी
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम
0: हाँ
1: अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या
0: या
1: खान
0: व्यंजन।
1: पान, हाँ, पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे, और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए। हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी।
1: अरे देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा
0: जी
1: अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन, तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही
0: और
1: सकते
0: इसे
1: हैं।
0: बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस
1: हाँ,
0: उसे रात को भिगोना है हमें।
1: और सुबह ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं। नमक और काली मिर्च डालकर भी
0: और
1: खा
0: अगर वो
1: सकते
0: बच
1: हैं।
0: गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन
1: चीले
0: गए।
1: बन गए, क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसालों, ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं इसके डोसे, लड्डू। रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरी डोसे, कम घी, गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही ज्वार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा, यानी जो ज्वारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं। इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई

0: जाती है बाजरा और ज्वार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली है ना, तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है,
0: धीरे
1: पकता
0: धीरे
1: रहता है
0: पकता रहता।
1: घंटों,
0: हाँ
1: फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है
0: बहुत
1: ये।
0: ताकत होती है। बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग है ना, जो बड़े
1: हाँ,
0: बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने
1: और
0: थे
1: इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी
0: जी।
1: करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ
0: अच्छा।
1: उसमें डाल के और उस खिचड़ी का सेवन करते थे,
0: जी
1: तो बाकी वो गायों का काम करते थे, तो उनकी शक्ति देखने लायक होती थी।
0: जी एक साथ ही कहते कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और उन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काट कर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें, या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही अच्छे
1: बहुत
0: लगते।
1: अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने
0: जी।
1: लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज टमाटर ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले, और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके, जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने, और बाद में एक कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना हम, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया, उसे
1: ठीक
0: चपटा
1: है।
0: चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के, और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते में। उसको तलते भी हैं और कुछ कुछ लोग सेक लेते
1: सीख
0: हैं।
1: ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें,
0: जी।
1: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी, और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना।
0: जी
1: और अब
0: और
1: एक गाना सुन ले।
0: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही कर दी है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता रहना चाहिए।
1: तो हंसिए और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली को,
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के

0: स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
0: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
0: जी जी।
1: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदनवार से लेकर हवा महल और अच्छा, छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
0: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव। आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
1: जी हाँ जी।
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
1: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे। तो रेडियो कार्टून जो है उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
0: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी।
1: जी।
0: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
1: बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
0: बिल्कुल वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम
1: करता
0: है।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा।
0: जी तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
1: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नजर रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताजा खबर उस पे बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
0: बहुत
1: में।
0: बहुत गहरी बात कह दी आपने देवेंद्र जी कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
1: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे दरवाजों पे सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि

0: छोटे थे
1: तो
0: तो
1: घर की दीवारें आपने
0: घर
1: खराब
0: की दीवारें बहुत खराब करते थे।
1: कर
0: और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे माता पिता,
1: दी।
0: वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये
1: हाँ
0: छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई। तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता
1: हाँ
0: है?
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: 12 साल का
0: उन्होंने,
1: बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका
0: वही
1: दिमाग
0: है,
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले,
1: हाँ
0: उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना
1: जी
0: है,
1: जी
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है
1: अच्छा।
0: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद की
1: जी
0: तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
0: जी
1: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम,
0: जी
1: बताइए।
0: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। हमेशा
0: जी
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद 1-2 साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है। प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है, और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झल के, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है, तो ये सब
0: जी, ये सभी
1: तो
0: चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी हाँ,
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: इन
1: बिल्कुल,
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं। तो
1: ये
0: मतलब वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ, कहता है कई बार उसे, जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा
0: है।
1: सकते
0: जी
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है, तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है उसके बाद कागज आता है, और
0: अच्छा
1: वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को
0: बहुत सुंदर। जी
1: मैं
0: जी जी तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में ही तो निकलनी है।
0: बिल्कुल
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई, तो वहां पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे, थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे, फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे
0: अरे
1: तो
0: अच्छा
1: आप थोड़ा आहिस्ता, तो मैंने
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में एक कार्टून
1: जी
0: बना
1: हाँ जी
0: लेते हैं।
1: हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो
0: सेवनटीन
1: रिकॉर्ड, हाँ
0: 17
1: रिकॉर्ड है,
0: कार्टून आप एक दिन में बना
1: एक दिन
0: लेते
1: में
0: हैं।
1: बनाने का रिकॉर्ड है, मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं, तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया, चपरासी आया वो झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया, इस तरह से ये सब
0: अरे वाह,
1: कार्टून्स
0: बहुत सुंदर। तो आपके
1: तो
0: विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के? हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, ये सब खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं
0: सामाजिक विषय
1: देखते हैं,
0: हैं,
1: हाँ सामाजिक
0: राजनीतिक
1: विषय
0: विषय
1: होते हैं,
0: हैं।
1: राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं, और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो,
0: हाँ
1: और

0: और में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
1: बहुत
0: उसको
1: बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के
0: जी
1: प्रति।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है जहां,
0: हाँ
1: ऐसे में
0: बिल्कुल
1: एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है। क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो
1: जी,
0: कार्टून की ही देन होती है।
1: यानी
0: और
1: आज भी इसकी उपयोगिता वही
0: उपयोगिता
1: है जो
0: इसकी
1: पहले
0: बिल्कुल
1: हुआ
0: बिल्कुल
1: करती
0: बनी
1: थी।
0: हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे
1: जी
0: को हंसते नहीं देखा है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए
0: हाँ ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है,
1: या व्यंग्य?
0: और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो,
1: जी
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग
1: बिल्कुल
0: हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे
1: जी,
0: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: जाती।
1: सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स। तो
0: हाँ वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है।
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये 3 फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं। तो ये
1: जी
0: एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही प्यार
0: प्यार है।
1: है,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर।
0: सच

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स हैं जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस

0: आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
1: शुक्रिया।
0: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: आपने बहुत ही
0: और
1: क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये
0: जी
1: एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है,
0: जी
1: चाहे
0: जी
1: वो लेखक
0: बिल्कुल।
1: है, चाहे कार्टूनिस्ट है,
0: हाँ
1: या वो
0: बस
1: सिंगर है, कोई भी कलाकार हो
0: बहुत थोड़ी
1: सकता
0: सी
1: है।
0: रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट, बस ये है।
1: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
0: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है। और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
1: सबसे बड़ी
0: तो
1: बात ये
0: हाँ ये
1: है,
0: बहुत जरूरी है,
1: मतलब
0: खुश
1: दिमाग की
0: होना
1: खिड़कियां खुली होनी
0: खुली
1: चाहिए।
0: होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं
1: हाँ, सबसे बड़ी बात ये है
0: चलता
1: कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो
0: है।
1: पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना
0: हाँ
1: पड़ता
0: वैसा
1: है।
0: बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो
0: हाँ
1: वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
0: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त तो नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे
1: प्रोफेशनली
0: हैं,
1: जब आप
0: हाँ
1: काम
0: जब कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: हैं,
1: हैं।
0: उस वक्त में जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज़ है।
1: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं।
0: जी
1: क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
0: बिल्कुल होती है। और सीमा
1: थोड़ा हमें
0: रेखा
1: बताइए किस तरह की ये लाइन होती है,
0: ये,
1: क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं
0: हाँ
1: एक।
0: ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए। वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मेंटेन करते हुए। और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज़ बहुत बुरी है। तो कार्टून में इन चीज़ों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
1: ये एक सीमा रेखा है
0: हाँ
1: आपके
0: ये
1: सामने।
0: सीमा रेखा है, किसी
1: हाथ
0: का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज़्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज़्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रहीं, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज़्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा,
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: सुप्रसिद्ध गीतकार
1: बिल्कुल।
0: और सांसद।
1: अरे
0: तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला,
1: जी
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है
1: हाँ
0: और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है,
1: अरे
0: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब, बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात।

0: साथ हैं।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विदा है, बहुत गहरी विदा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
0: देखते
1: पढ़ते
0: हैं,
1: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकोई बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
0: तू चंदा मैं चांदनी।
1: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया एक कार्टून याद आ रहा है मुझे।
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेंड्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी

0: अरे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
1: जी
0: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है,
1: जी
0: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध,
1: गंध।
0: मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है, और
1: ओहो
0: इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
1: जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है,
0: हाँ जी
1: मनोविज्ञान क्या होता है
0: हाँ
1: किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। तो
0: नहीं
1: एक
0: वो
1: साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
0: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ, तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है,
1: जी
0: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
1: जी
0: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे
1: जी
0: बढ़ना चाहिए, ये
1: जी बहुत सुंदर। बिल्कुल
0: ऐसे
1: यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए तो फिर
0: पहले
1: वहीं
0: विचार
1: खड़े रह जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: बस बस बस
1: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रही हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
0: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
1: विचार बदला होगा, सोच
0: विचार
1: बदली
0: भी
1: होगी।
0: बदला है, और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर वो है, और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मजा आता
1: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको
0: है।
1: याद हो आपका बनाया हुआ?
0: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा झल रही है उसको बैठे हुए, है ना कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे
1: जी
0: की झलक
1: जी
0: मिली।
1: जी
0: अब उसके बाद उस सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दासता से मुक्त कराएं।
1: ओह,
0: पुरुष की दास्ता है। तो ये ऐसी चीजें हैं।
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने
0: हाँ, बस,
1: जो
0: बस, बस,
1: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही
0: है।
1: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और उसको दास्ता बता रही है।
0: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको ये उसमें दिखाने की कोशिश।
1: बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
0: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। ये
1: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब तक?
0: जी जी जी जी।
1: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
0: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते अभी, मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
1: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं।
0: जी,
1: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए,
0: आ ही गए,
1: कितने विचार और आने हैं।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात। मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
0: जी हाँ,
1: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
0: हाँ जी,
1: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं
0: जी,
1: एक गीत सुन लेते हैं। गीत बताइए।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
1: बहुत सुंदर गीत है ये।
0: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
1: तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो।

0: सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो, इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल।
1: ऐसी इस
0: ये एक
1: तरह से
0: सीरीज लंबी
1: ये
0: चली है
1: सीरीज
0: फिर।
1: लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने
1: उसमें
0: काफी पसंद किया,
1: बहुत
0: खास
1: बहुत
0: तौर से
1: पसंद किया।
0: महिलाओं ने।
1: जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब करते
0: बिल्कुल
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है। ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी, तो ये
1: हाँ
0: निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं? तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूं क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो वो भाव ताव होना, ये सब चीजें, तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं
0: जीवन
1: उनसे
0: में
1: बस।
0: बिल्कुल, यानी कि एक
1: हाँ
0: कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की ज़रूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की ज़रूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे? किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं,
0: जी
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है
0: अच्छा
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां
0: जी
1: पर,
0: जी
1: और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके
0: चाहते
1: प्रेरणा
0: हैं
1: स्रोत हाँ
0: जी
1: चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी, वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहां विविधता नहीं
1: हाँ
0: है
1: उतनी नहीं
0: लेकिन
1: है,
0: लोगों में जागरूकता बहुत है,
1: जागरूकता बहुत है।
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो कार्टून।
1: हाँ हाँ
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं।
1: नहीं होते हैं तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहां की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की है तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है। तो उन चीजों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटें, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को, तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
0: जी
1: सुधार में,
0: जी बहुत
1: ये
0: सुंदर,
1: बात है।
0: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
1: जी
0: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं
1: हाँ
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है, और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

एफएम 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे आज के इस युववाणी के अंक में, जिसे प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, भारत देश क्रांति और क्रांतिकारियों का देश है। भारत की आजादी से लेकर भारत को विकासशील देश बनाने में ऐसे कई क्रांति के बारे में हमने सुना और पढ़ा। तो आइए, आज के इस युववाणी के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं श्वेत क्रांति के बारे में। दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का तात्पर्य 13 जनवरी 1970 को शुरू किए गए डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के सफल कार्यान्वयन से है। भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की अगुवाई में ये विश्व स्तर पर सबसे व्यापक डेयरी विकास पहल है। इस पहल का उद्देश्य डेयरी किसानों को अपने विकास को आगे बढ़ाने और उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों पर नियंत्रण पाने में सशक्त बनाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व दूरदर्शी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, जो भारत की श्वेत क्रांति के जनक थे। उनका क्रांतिकारी दृष्टिकोण दर्शाता है कि रणनीतिक योजना और सामुदायिक सहयोग किस तरह सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। हर साल 26 नवंबर को भारत डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है। भारत में श्वेत क्रांति ने डेयरी उद्योग, विशेष रूप से दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में उल्लेखनीय परिवर्तन और वृद्धि की। श्वेत क्रांति का महत्व ग्रामीण सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में इसके योगदान में निहित है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और सहकारी ढांचे का निर्माण करके इसने न केवल किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया, बल्कि भारत को दुनिया भर में सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक बना दिया, जिससे कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। 30 वर्षों में इसने भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को प्रभावी रूप से दोगुना कर दिया, जिससे डेयरी फार्मिंग देश के सबसे बड़े आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार जनरेटर के रूप में स्थापित हो गई। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी श्वेत क्रांति की। स्वतंत्रता के बाद के 2 दशकों में भारत के डेयरी परिदृश्य को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1950 से 1960 के दौरान दूध उत्पादन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर मात्र 1.6 थी और 1960 से 1970 के दौरान ये और गिरकर मात्र 1.15 हो गई। 1950 से 1951 में प्रति व्यक्ति दूध की खपत मात्र 124 ग्राम प्रतिदिन थी और 1970 तक ये घटकर मात्र 107 ग्राम प्रतिदिन रह गई, जो वैश्विक रूप से अनुशंसित पोषण मानकों से काफी नीचे का स्तर था। इस अवधि के दौरान भारत दूध की कमी वाला देश था, जो अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर था। भारत के डेयरी उद्योग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी आबादी होने के बावजूद सालाना 22 मिलियन टन से भी कम दूध का उत्पादन हुआ। इन्हीं बाधाओं को समझते हुए ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य डेयरी फार्मिंग प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना, मवेशियों की नस्लों को बढ़ाना, सहकारी संरचनाओं की स्थापना करना और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना था। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के क्या मुख्य उद्देश्य थे, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक लक्ष्य और टिकाऊ ढांचा स्थापित करना, जो न केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में भी योगदान देना था और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निर्धारण गतिशीलता में निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। इस पहल को 3
चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। पहला चरण 1970 से 1980, दूसरा 1981 से 1985 और तीसरा चरण 1985 से 1996। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति पर चर्चा बस यहीं तक।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है हिंदी नवजागरण के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र। वार्ताकार है रीना कुमारी।
5: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस विशेष वार्ता में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आज आपके साथ इस खास विषय के साथ रीना गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के उस सूर्य की जिसने अंधकार से घिरे समाज को न केवल ज्ञान का आलोक दिया बल्कि हिंदी भाषा और उसकी संस्कृति की पुनर्जीवन प्रदान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सन 1850 का वह दौर था जब भारत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश की आत्मा कराह रही थी। ठीक उसी समय 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित और सम्भ्रांत परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास स्वयं एक जाने माने कवि थे। साहित्य की यह विरासत बालक हरिश्चंद्र की जैसे घुट्टी में मिली थी। लेकिन विडंबना देखिए कि मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में उनके सिर से माता का और 15 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ गया। इतनी कम उम्र में अनाथ हो जाना किसी भी किशोर को तोड़ सकता है। किंतु हरिश्चंद्र का विलक्षण व्यक्तित्व तो इस परीक्षा में और अधिक तपा हुआ सोना बनकर निकला। उन्होंने अपनी तरुणाई निजी दुखों में खपाने के बजाय राष्ट्र और समाज के पुनरुत्थान के महायज्ञ में समर्पित कर दिया। भारतेंदु कोई नाम मात्र नहीं थे, यह उस युग की प्रखर चेतना का प्रतीक थे। जनता ने उन्हें स्वयं यह उपाधि दी थी जिसका अर्थ है भारत का चंद्र या भारत का चंद्रमा। जब हम उनके साहित्यिक अवदान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है हिंदी गद्य की विकास पर। भारतेंदु जी की आने से पहले हिंदी कविता की भाषा तो ब्रजभाषा थी, परंतु गद्य के क्षेत्र में कोई निश्चित मानक और स्थिरता नहीं थी। खड़ी बोली अभी अपने शैशव काल में थी और उसे परिमार्जित करने का बीड़ा भारतेंदु ने उठाया। उन्होंने लोक व्यवहार की भाषा यानी आम बोलचाल की खड़ी बोली की साहित्य का माध्यम बनाया। उनका यह स्पष्ट मानना था निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिनन मिटत नहीं की शूल। अपनी मातृभाषा अपनी बोली के प्रति ये अगाध प्रेम ही उनके नवजागरण का केंद्रीय स्वर था। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक देश की जनता अपनी भाषा में नहीं सोचेगी तब तक उसके भीतर वैचारिक स्वतंत्रता की अलख नहीं जग सकती। भारतेंदु जी ने केवल साहित्य की रचना नहीं की बल्कि उन्होंने लेखकों और पाठकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। उनके नेतृत्व में एक ऐसा रचनाकार समूह उभरा जिसे इतिहास में भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन, अमिंदित व्यास और राधा कृष्ण दास जैसे तेजस्वी लेखक शामिल थे। भारतेंदु जी ने इन सबको एक मंच पर लाकर हिंदी पत्रकारिता और साहित्य को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिनमें कवि, वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिश्चंद चंद्रिका कर दिया गया, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से बाल बोधनी शामिल है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, छुआछूत, बाल विवाह और बहुविवाह जैसे कुप्रथाओं पर लिखे व्यंग किए और करारी चोट की। उनका व्यंग बहुत मारक था। वे केवल उपदेश नहीं देते थे बल्कि हंसा हंसा कर समाज को

0: आपसी फूट अज्ञानता, आलस्य और अहंकार ने भारत माता को पंगु बना दिया है। वे अपनी एक कविता में देश की दुर्दशा पर रोते हुए लिखते हैं, रोऊ सब मिलके आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह रोना सिर्फ निराशा का रोना नहीं था, बल्कि सोई हुई जनता को झकझोर कर जगाने वाला एक आह्वान था। श्रोताओं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना संसार अत्यंत विशाल और बहुयामी था, जिन्होंने मात्र 35 वर्ष की छोटी सी आयु में जो कार्य किया वह सामान्यतः कई शताब्दियों में भी पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने नाटक, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास, यात्रा, वृत्तांत, साहित्य की लगभग हर विधा में अपनी अमित छाप छोड़ी। वे एक सच्चे अर्थों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे नाटककार थे, अभिनेता थे, कवि थे, पत्रकार थे, समाज सुधारक थे और सबसे बढ़कर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके हृदय में देश के प्रति जो तड़प थी वह उनके हर शब्द में झलकती थी। उन्होंने अपनी उदारता और दानशीलता के कारण अपनी पैतृक संपत्ति तक परोपकार और साहित्य सेवा में लुटा दी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आज की इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी आधुनिक हिंदी भाषा, हमारी राष्ट्र अस्मिता की नींव में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों का पसीना और उनका वैचारिक संघर्ष शामिल है। उन्होंने हमें अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया, अपनी संस्कृति से हमें प्रेम करना सिखाया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। भारतेंदु जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आयु लंबी होने से महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी उपस्थिति से समाज को कितना प्रदीप्त कर जाते हैं। उन्होंने दीपक की तरह खुद को जलाया और हिंदी जगत को प्रकाश से भर दिया। आइए इस महान युग पुरुष के पावन स्मृति दिवस पर यह संकल्प ले कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक प्रबुद्ध, सशक्त और जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आज की यह वार्ता यहीं समाप्त होती है, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था हिंदी नवजागरण के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र। वार्ताकार थी रीना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दोस्तों, आज के इस अंक में चलिए आपको बताते हैं कि अपने जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस ग्रह को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से न सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसके लिए आप पानी के संरक्षण, रिसाइकलिंग उत्पादों को खरीदने, वाहनों की बजाय साइकिलिंग या फिर पैदल चलना, अधिक पौधे लगाने आदि से शुरुआत कर सकते हैं। आइए इस अंक के माध्यम से हम आपको ऐसे 5 तरीके बताते हैं जिसके माध्यम से आप खुद को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। सबसे पहले, अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ पौधे हमें न केवल ऑक्सीजन और फल प्रदान करते हैं, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और वन्य जीवों का आश्रय बनते हैं। यही नहीं, गर्मियों के दौरान घर को ठंडा और ताजा रखने के लिए इसके आसपास कुछ पौधे लगाएं। इससे आपका घर भी हरियाली से समृद्ध होगा। इसके अलावा स्वस्थ जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का उपभोग करने के लिए अपनी बालकनी या बगीचों में जड़ी बूटियां या सब्जियों के पौधे लगाएं। दूसरा, अपने डाइट में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अपने डाइट में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हो। ये एक ही समय में आपको पोषण और ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। ये अत्यंत कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। तीसरा, रिसाइकलिंग उत्पादों को कचरा न समझे। रिसाइकलिंग उत्पाद आपकी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। ये प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा का संरक्षण और आर्थिक लाभ देने में सक्षम है। आप अपनी बैटरी, कागज, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकल कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दे, उसे लेकर एक बार जरूर सोचे कि क्या इस वस्तु को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अगर हाँ, तो उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेजें। दोस्तों, चौथा तरीका, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहन या साइकिल का प्रयोग करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान

न पहुंचे, जैसे वाहनों का इस्तेमाल करने वाले पेट्रोल या डीजल के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। दरअसल सांस लेने के लिए हवा को साफ रखना जरूरी है, जिसके लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं करें, ताकि स्वच्छ खुली हवा में सांस ली जा सके। दोस्तों, पांचवा और अंतिम उपाय, प्लास्टिक पॉलिथीन आदि का इस्तेमाल न करें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गलत है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब प्लास्टिक को इकट्ठा करके इसका निपटान करने के लिए जलाया जाता है, तो उससे जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। इसलिए इसका उपयोग और इस्तेमाल आज से ही बिल्कुल कम कर दें। आज का विचार, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब प्रीति सिन्हा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम युववाणी से विदा लेने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय
0: बाल संघ कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत है। आज आपसे बातचीत करेंगे बच्चों आपकी प्रीति दीदी। और बताइए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अरे भाई, हमें तो पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छे और खुश होंगे। और बच्चों देखिए, कहते हैं ना, जब खुश रहेंगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। बच्चों कभी कभी देखिए ना, छोटी मोटी परेशानियों से ना घबराना नहीं चाहिए, है ना? बस सोचना चाहिए कि मेरी परेशानी दूर कैसे होगी, कोशिश करना चाहिए। हाँ, जानते ना, अगर आप थोड़ा सा परेशान होंगे तो परेशानी और बढ़ती है बच्चों। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना? चलिए भाई, अगर आपका पढ़ने में भी मन ना लगे या फिर कुछ भी ना करने का मन लगे तो आप कहीं भी घूमने चले जाइए, किताब का भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं, है ना? बच्चे या तो पार्क में चले जाएं या फिर अपने बगीचे में चलें, सबसे अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बगीचे में पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल, हरी हरी पत्तियां देखकर मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है, लगता है ना बच्चों, खुश हो जाते हैं ना? आप उनसे बातें भी कर सकते हैं भाई, थोड़ी देर सुकून से बैठिए, मन बिल्कुल खुश हो जाएगा आपका, है ना? बच्चों देखिए, कहते हैं ना, हरियाली किसे अच्छा नहीं लगता। जरा आप सोचिए कि अगर हमारे आसपास एक भी पेड़ पौधा ना हो तो कैसा लगता है ना? ना कहीं हरियाली होगी, ना ही छाया मिलेगा। कहते हैं ना, अगर हम दूर पैदल तक चलते हैं तो क्या सोचते हैं, कहीं पेड़ मिले और छाया कर लें और बैठ जाए थोड़ी देर, सोचते हैं ना?

तो बच्चों देखिए, हम लोग को केवल इतना ध्यान देना चाहिए कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं। बच्चों इतना ही नहीं, लगाने से ज्यादा उनको ध्यान भी देना होगा, है ना? बच्चों इसलिए पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच कहा जाए तो पेड़ पौधे एक सच्चे साथी की तरह होते हैं, है ना? ये हरे भरे पेड़, इनके बिना धरती पर जीना बिल्कुल जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना? देखिए तरह तरह की कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चों सुबह जब हम देखिए टहलने जाते हैं तो हरे भरे पेड़ों को देखकर कितना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है ना? और हरी पत्तियाँ, रंग बिरंगे फूल और मीठी मीठी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं? टहलने जाते हैं, कहाँ जाते हैं भाई, आप लोग तो सोते हैं कि थोड़ा और सो लें, है ना? चलिए बच्चों, पेड़ों पर बोलते पक्षी तो वातावरण को और भी सुंदर बना देते हैं। और बच्चों सुबह टहलना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, कोशिश करिए, उठ जाएंगे। बच्चों पेड़ पौधे से प्यार करना चाहिए और हमेशा सही देखभाल करना चाहिए। बच्चों पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है ना? बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते, वे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और बच्चों देखिए, ऑक्सीजन हम सभी के लिए ज़रूरी है, है ना? क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित रह पाएंगे, सांस ले पाएंगे? नहीं ना। इसलिए बच्चों पेड़ पौधे सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, अपने से ज़्यादा इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम तो बोल सकते हैं ना बच्चों कि ये तो बोल भी सकते हैं, है ना? हम लोग तो बोलते हैं ना, ये तो बोल भी नहीं सकते। आप उसमें पानी डालिए ना डालिए, उनको प्यास लगी, कहाँ बोल पाते हैं, नहीं ना? तो उनका ख्याल हम सभी को करना पड़ेगा बच्चों। बच्चों जो भी हम लोग फल, साग, सब्जी, अनाज खाते हैं वो पेड़ पौधों से तो मिलता है। पेड़ हमें लकड़ी, गोंद, रबर, कागज बहुत कुछ देते हैं बच्चों, है ना? अनेक पेड़ से तो औषधियाँ भी बनाई जाती है बच्चों। यहाँ तक कि हम लोग को पता भी नहीं है कि कितने पेड़ों से कितनी कितनी दवाइयाँ बना जाते हैं और फायदा भी करता है। कहते हैं ना, शुगर हो, बीपी हो, ये छाल है, वो है, लौंग है, ये सब तो हमें पौधों से ही मिलता है। बच्चों सबसे बड़ी बात कि पक्षी, जानवरों और छोटे छोटे जीवों के भी घर पेड़ पौधे ही हैं, है ना? पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। बंदर और गिलहरी देखिए पेड़ पर ही खेलते हैं। इसी तरह कई कीड़े मकोड़े भी पेड़ों पौधे पर अपना जीवन बिताते हैं। बच्चों जरा सोचिए, अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये जीव कहाँ रहेंगे? परेशानियाँ होंगी ना, तो ये सोचिए। हम एक के सोचने नहीं, अब ये मत कहिए कि हम सोचे हम पेड़ लगाएं, नहीं। अगर हम कहते हैं ना एक कदम बढ़ेंगे तो और भी कदम बढ़ेंगे, तो चलिए करते हैं। आज हर जगह नई सड़कें, नए घर बनाने के चक्कर में पेड़ों को, जंगलों को बिल्कुल काटते जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, है ना बच्चों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि पेड़ काटिए लेकिन उसके बदले लगाइए जरूर। बच्चों इसलिए हम सभी को पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि लगाए और लगे हुए पौधों को भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें समय पर पानी देना, उनकी कुड़ाई करना, धूप से बचाना, छाए में रखना और बड़ा होने तक उनकी पूरी तरह से देखभाल करना। जैसे हम छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं ना, तो पौधे भी तो वही हैं। छोटे बच्चे हैं, वो तो कुछ भी नहीं जानते। हम पानी देंगे तो वो बढ़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं कि हम पौधा लगाएं और उसे पानी ना दे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप भी ध्यान दीजिए, है ना? तो चलिए बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा का ज्ञान जरूर। बच्चों आप लोग भी पौधा जरूर लगाइए, है ना? ध्यान से सुने ना, लगाइए और उनका ख्याल करिए। वो लोग हम ही पर निर्भर हैं। हमें देते बहुत कुछ है लेकिन लेते कुछ नहीं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों हिंदी हमारी सबसे प्यारी और सरल भाषा है। बच्चों हम सभी लोग सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह केवल बातचीत करने का माध्यम नहीं है बच्चों, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हर बच्चों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर में अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी और भाई बहनों से अक्सर हिंदी में ही बात करते हैं। जब हम किसी

0: से अपने मन की बात आसानी से कह पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। बच्चों, यह भाषा अपनी बात साफ और सरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर हमें हिंदी अच्छी तरह बोलना और लिखना आता है तो हम अपने विचारों को सही तरीके से दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, है ना। हिंदी भाषा हमारे देश की एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषाओं के होते हुए भी हिंदी कई लोगों के बीच बातचीत की एक सामान्य भाषा बन जाती है। इसलिए हिंदी का ज्ञान हम दूसरे लोगों से जोड़ने में मदद करता है। बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बस अगर कहिए कि हिंदी में गिनती लिखो तो वो नहीं आता। बच्चों, बिल्कुल गलत बात है। ज़रूरी सभी चीज़ है ना। जब हिंदी अच्छी आती है तो हम अपनी किताबें आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। बच्चों, सबसे खास बात, हिंदी जब भी पढ़ें या लिखें हमेशा बोल बोल कर पढ़ें ताकि हम शब्दों का सही उच्चारण कर सकें। बच्चों, आइए सुनते हैं इसी विषय पर भेंट वार्ता। विषय है आइए सीखे हिंदी कविता और अर्थ। भेंट वार्ताकार हैं बृहरत्ना प्रजापति शिक्षिका डाला और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा जी।
1: हिंदी के महान कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी भाषा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। हिंदी में निबंध और वाद विवाद का जितना महत्व है उतना ही महत्व हिंदी कविताओं और कविता पाठ का भी है। क्लास में, स्कूल में, स्टेज पर बच्चे अक्सर कविता जरूर सुनाते हैं। कविताओं को सुनाने का तरीका क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके लिए आज हमारे साथ हैं शिक्षिका बृहरत्ना प्रजापति जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: तो बृहरत्ना जी, आपसे आज हम हिंदी की कविताओं के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले कविताओं को पढ़ने का तरीका बच्चों को बताइए जिससे बच्चे आसानी से उसे याद कर लें, और उसका अर्थ भी बता दीजिएगा।
2: हाँ, तो धन्यवाद मैम जी। हाँ बच्चों, आज हम आपको एक कविता सुनाएंगे और कविता को बच्चों लय के द्वारा ही गाते हैं। पहले मैं लय के साथ कविता आपको सुनाऊंगी, फिर उसका अर्थ बताऊंगी
1: जी।
2: कविता का शीर्षक है बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जी कविता में बहुत ही पक्षियों की व्यथा को बता रहे हैं। पक्षियों की व्यथा क्या है उसको यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं
1: जी।
2: कविता सुनिएगा बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब बच्चों कविता का अर्थ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब खुला हुआ, आजाद, स्वतंत्र, कुछ भी कह सकते। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी जो है खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजर बंद, पिंजर बंद माने पिजलों में बंद, न गा पाएंगे। हम पंछी खुले आकाश के हैं, हम खुले आकाश के पक्षी हैं जो कि पिंजलों में बंद होकर अपने गीत को गा नहीं पाएंगे जी। कनक, कनक मीन्स होता है सोना, तीलियों, तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे पंख जो है कनक सोने के तीलियों से टकरा करके कोमल पंख टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। अब मैं कविता की दूसरी पैराग्राफ पढ़ती हूँ
1: जी।
2: हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम जो पक्षी हैं स्वच्छ जल, बहता जल पीने वाले हैं, भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम सोने की कटोरी में मैदा, सोने की कटोरी

0: में खाना नहीं खाएंगे, इससे अच्छा तो कहीं कटुक मिस कड़वा, निबोरी मिस नीम का फल, इससे अच्छा तो नीम का फल है, सोने के कटोरी में खाना खाने से अच्छा नीम का कड़वा फल है।
1: हाँ, मतलब उतना कड़वा खा लिया जाएगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हाँ, नीम तो बहुत कड़वा होता है ना।
0: हाँ, यहाँ मैदा से मतलब ये है कि जैसे हम मैदा को अच्छा चीज जानते हैं।
1: जी
0: जी, तो इसीलिए खाने का यहाँ मैदा से ताल्लुक है कि कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने के कटोरी में मैदा खाने से अच्छा नीम का कड़वा फल है। हम भूखे कब, हाँ पक्षी कह रहे हैं कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जो है सोने के कटोरी में मैदा खाने से अच्छा हम तो नीम का फल ही खाएंगे। जी जी। अब कविता, बच्चों ध्यान से कविता की अगली पंक्ति सुनिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीरें, स्वर्ण में सोना, श्रृंखला में जंजीरें, सोने की जंजीरों के बंधन में हम अपनी गति यानी कि अपनी चाल, गति में चाल, अपनी चाल और उड़ान सब भूल चुके हैं। सोने की जंजीरों में हम बंद करके अपनी गति यानी कि चाल और उड़ान सब भूल चुके हैं, ऐसा पक्षी कह रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, अब हम केवल सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर यानी कि पेड़ की फुनगियों पर केवल हम झूला झूल रहे हैं। पक्षी अब केवल सपना देख रहे हैं कि हम जो है केवल पेड़ की फुनगियों पर झूला झूल रहे हैं।
1: झूल रहे हैं। हाँ।
0: जी बिल्कुल। अब बच्चों आगे देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि आगे कहते हैं, अरमान मीन्स बच्चों इच्छा, जो हमारी चाहत है। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान, हमारी ये इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को पा लें, लाल किरण सी चोंच खोल और अपनी चोंच को खोल करके लाल किरणों रूपी अनार के दाने को चुग लें यानी कि खा लें, उनकी यही इच्छा थी पक्षियों की। जी
1: जी।
0: अब आगे बच्चों देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी। अब आगे पक्षी क्या सोच रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज क्षितिज का मतलब आकाश और धरती का मिलन
1: जी।
0: होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमारी पंखों की जो है होड़ा होड़ी यानी कि होड़ा होड़ी का मतलब प्रतियोगिता होती
1: जी।
0: हम पंखों की प्रतियोगिता होती, हम जो उड़ते सीमाहीन बिल्कुल आकाश की सीमा पर जाते और हमारी प्रतियोगिता होती, हमारे उड़ने की प्रतियोगिता होती। तो जब प्रतियोगिता होती तो या तो हमारा धरती और आकाश का यानी क्षितिज का मिलन हो जाता या तो हमारी अंतिम सांस ही रुक जाती
1: जी,
0: हमारी मृत्यु हो जाती
1: जी,
0: ऐसा पक्षी सोच रहे हैं। नील नदो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नील, नील का मतलब घोंसला, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, नील का मतलब होता है घोंसला। तो नील नदो चाहे टहनी का, इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे तुम घोंसला मत दो, डालियों की घोंसला मत दो, हमको घोंसला बनाने मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय का मतलब हमारे रहने का स्थान, चाहे तुम हमारे रहने का स्थान छिन्न भिन्न कर डालो यानी कि तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने हमारे जो पंख दिए हैं उसमें उड़ा, उसके उड़ान में विघ्न बाधा मत डालो। तो बच्चों इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों को कभी भी कैद करके रखना

0: चाहिए। कविता समाप्त हुई।
1: हाँ तो बस ये तो कविता हो गई हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे याद करें और उसका अर्थ भी, ये सब जाना आज हमने बृहरत्ना मैम जी से। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया और उम्मीद है बच्चों की ये कविता तो अर्थ के साथ बिल्कुल तैयार हो गई होगी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बच्चों अभी आप इस संदेश से पहले सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था आइए जाने हिंदी कविता और अर्थ। भेंट वार्ता का अर्थ थी बृहरत्ना प्रजापति शिक्षिका डाला और उनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा जी। चलिए बच्चों अब हम आपसे कुछ खास चर्चा करेंगे, जानते हैं क्या, आइए श्री आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती पर चलिए बच्चों हम उनके कुछ अनमोल वचनों की चर्चा करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि आचार्य विनोबा भावे जी कौन थे? चलिए हम बताते हैं। बच्चों उनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में हुआ था। वे हमारे देश के बहुत महान और अच्छे व्यक्ति थे। बच्चों उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में लगा दिया। वे गरीबों, किसानों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। बच्चों वो बचपन से ही बहुत ही शांत और बुद्धिमान थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वे हमेशा कुछ नया सीखना और करना चाहते थे। बच्चों उन्हें बिल्कुल सादा जीवन जीना पसंद था। वे दिखावे से दूर रहते और दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद करते और अपना अधिक समय अच्छे कामों में लगाते थे। बच्चों जब वो महात्मा गांधी जी से मिले तो उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी से मिलने के बाद उनके साथ देश की सेवा से जुड़ गए। बच्चों गांधी जी की तरह विनोबा भावे जी भी सत्य और अहिंसा के में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि बिना किसी से लड़ाई किए भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बच्चों श्री विनोबा भावे जी ने गरीब और जिसके पास खेती के जमीन नहीं थे उनकी परेशानी को समझा और उन्होंने देखा कि बहुत से किसान के पास खेती करने के लिए कुछ भी जमीन नहीं है, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक जमीन थी। तब उन्होंने बहुत प्रेम से लोगों से बात करके अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब लोगों को देने की अपील की, मतलब उनसे बात की। बच्चों इसी काम से भूदान आंदोलन शुरू हुआ। बच्चों भूदान का अर्थ है अपनी जमीन का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करना। बच्चों वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे और उनसे गरीब की मदद करने की बात करते थे। बच्चों आचार्य विनोबा भावे जी ने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा कहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ज़्यादा धन की जरूरत नहीं होती, अगर हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम और मदद करने की भावना है तो हम सभी भी समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। तो हम बच्चों हमेशा सच बोलें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, सबके साथ प्यार से रहें, प्यार से बोलें और अपने देश को अच्छा बनाने में अपना योगदान दें। बच्चों इसी बातचीत के साथ आइए अपने कार्यक्रम में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: बच्चों, अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को। बच्चों कहते हैं ना, बातचीत करने लगी तो समय का पता ही नहीं लगता, है ना। लेकिन हम लोग को समय का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। बच्चों जाते जाते एक बात और, आप लोग हमेशा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। बच्चों भूलिएगा नहीं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए संगीत के साथ और नई चर्चा से। बच्चों अपने प्रीति दीदी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
4: अभी बच्चे बाल संघ कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी ओबरा है, 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आज 9वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कार्यक्रम का उद्घाटन कैलिन। ए मौका पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहलिन कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प के आगे बढ़ोले का अभियान हो। वहां के कहने की अभियान हर माता के स्वास्थ्य, हर लेखन के पोषण आ हर परिवार के खुशहाली से जुड़ल बा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ष 2014 से गरीबन, लैकन, गर्भवती आ स्तनपान करावे वाली माता लोगिन के पोषण के प्राथमिकता दिहल गई है। वहां के कहने कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़न बदलाव कैल गई बा।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: कार्यक्रम में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर आ उत्तर प्रदेश सरकार का और यो मंत्री मौजूद रहना है। ये मौका पर पोषण मेलों का आयोजन कैल गई।
2: शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन हुआ और लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन के साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद भी हुआ। कार्यक्रम में इसके अतिरिक्त देश भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से किए गए कार्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक भी लिया और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर सुझाव भी लिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले में लगाए गए स्टॉलों पर गए और वहां लगे उत्पाद भी देखे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: एह बरिस पोषण माह का विषय हवे हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में आयोजित कामकाजी महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लेने। एह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री घोषणा कैले कि सरकार जल्दी है स्नातक अंतिम साल के मेधावी बेटियन के रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के साथ जोड़े जा रही हो।
3: हमने बेटियों और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत से स्नातक फाइनल ईयर की बालिकाओं को, 50,000 मेधावी बेटियों को हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा का 25 बरिस पूरा भइले के मौका पर भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन पर 17 सितंबर से एक महीना का सेवा संकल्प अभियान शुरू करी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बतौलने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर के जनसेवा का 25 बरिस पूरा करी है। वहां के कहने कि प्रधानमंत्री यह बरिस में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ ही सेवा के जत्रा के लगता रहे आगे बढ़ोले हमें। उनके अगुवाई में देश का प्रगति खाली विकास ले सीमित नहीं रहल, बल्क भारत के सांस्कृतिक पहचान आ विरासतों मजबूत भइल हो।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: प्रदेश में रुक रुक के हो रहल बरखा आ प्रमुख नदियन में बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते करीब 2 दर्जन से बेसी जिला बाढ़ के चपेटा में बाटे। एगो रिपोर्ट।
5: बहराइच में घाघरा नदी और अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। सीतापुर और फरुखाबाद में भी बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने बाढ़ और जल भराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश भर में 12 सितंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कैल जाई। एके लेके आज चित्रकूट जिला में एगो जन जागरूकता रैली निकालल गई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंकिता पटेल, पुत्री स्वर्गीय पंकज, निवासी ग्राम बिरधी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से दिनांक 16 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट, सांवला रंग, लंबा चेहरा और इकहरा बदन है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, इसी संबंध में एक सूचना और। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शांति देवी, पत्नी संतोष कुमार, निवासी ग्राम चौना, पोस्ट घघरा, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र से दिनांक 9 जून 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, गोरा रंग और गोल चेहरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात 9:30 पर। शाम 7:31 पर हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। हम और हमारा स्वास्थ्य, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा दंत चिकित्सक डॉक्टर दिव्यांशी सोनी से बबीता बत्रा की बातचीत, जिसका विषय होगा दांतों की आम समस्या और इनका समाधान। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:10 पर हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम जगत कार्यक्रम। इसमें आज बाल पोषण के लिए चिकित्सकीय विषय पर चिकित्सक श्रद्धा दुबे से अख्तर अली की बातचीत प्रसारित होगी। श्रोताओं, हम आपको एक बार इसे पुनः बताएं कि 6:10 पर ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे बाल पोषण के लिए चिकित्सकीय सलाह विषय पर चिकित्सक श्रद्धा दुबे से अख्तर अली की बातचीत। अलावा इसके फूलों की खेती बनी आमदनी का माध्यम, इस विषय पर जगत नारायण की बातचीत होगी वसीम अहमद से। अलावा इसके ग्रामीण भाई सुनेंगे लीलावती सिंह के गाए हुए लोकगीत।

ये था कार्यक्रम विवरण हमारे सुनने वालों के लिए। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन
1: सपंचन
0: के
1: के राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: जीरा
0: गुला
1: बहिन
0: बोल,
1: राम राम हो।
0: आपो के राम राम। और बतावें कि का हाल चाल बा अपने पंचायती
1: का
0: में।
1: हाल चाल बताई। इस समय जौन बरसात का मौसम भइल बा और इस समय जौन धूप निकलत बा ना, ऐसे जौन घरे में केहू ऐसा नहीं बा जीरा बहिन जेके बुखार सर्दी जुकाम
0: बिल्कुल
1: खांसी गटई में दर्द ई सब बीमारी से सब परेशान बा हो। एकदम समझ लो कि कहल जाला ना कि घरे में कबो कबो संकट जब आवला तो चारों तरफ से आवला, तो यही समझ लो कि संकट इस समय हमारे ऊपर बहुत बा।
0: आज देखा आप संकट का बात कैलिन तो आपे पे नहीं, जो गांव गिराव में भी पंच भैया और बहन लोगन ये देखा घर घर ये मौसम का असर होता ला। लेकिन ऐसने में अगर हमन के जो है कि सुरक्षित रहे चाहे तो
1: बिल्कुल
0: जैसे खान पान पे ध्यान दें और स्वच्छता पे ध्यान दें और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद जो ना कि अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देवल जाए, तो जब हम लोग ठीक रह जाए तभी अगर घर में कोई लड़का परानी या बड़ बुजुर्ग पड़ जातन तो उनकर हम लोग देखभाल भी करा ले और इलाज भी करा ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल जीरा बहन ये बात तो बिल्कुल आप सही कहले ना। और देखा हम तो कहब ना कि हम लोगों का शरीर के अंदर जो ताकत होला रोग से लड़े का
0: बिल्कुल
1: वो मजबूत होए के चाहिए,
0: एकदम
1: और
0: सही
1: वो
0: बात है।
1: मजबूत हुई कब, जब हम लोगों पोषण स्वच्छता और स्वास्थ्य ये तीनों पर विशेष ध्यान देव। काहे कि
0: बिल्कुल
1: ये देखा ये तिकड़ी होला, एक
0: हाँ
1: भी अगर मतलब गायब भइल तो जीवन एकदम संकट में आ जाला।
0: बिल्कुल
1: और केवल देखा अच्छा खाना खाए से ही कुछ नहीं होला जीरा बहन, अगर हाथ गंदा है और हाथ धोए से भी देखा कुछ नहीं हुई, लेकिन अगर खाए में पोषण नहीं बा तो देखा तब समस्या जरूर हुई। और एक बात हम और कहल चाहब, जैसे कि देखा हाथ जो गंदा अगर है तो उसे देखा खाए में कीटाणु जाई,
0: बिल्कुल
1: दस्त हुई, पेट खराब हुई,
0: हाँ
1: खाना अपन पची नहीं, और साथ में जो पोषण है शरीर में लगी नहीं, और कमजोरी बीमारी फिर गंदगी। ये देखा ये तीनों से अगर हम लोगों गंदगी के ही इस तीनों जितना बीमारी बतौनी है ना,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: सब कर जड़ जोन बा ये गंदगी है। अगर
0: बिल्कुल
1: हम लोगों हाथ साफ सुथरा करके खाना बनावत हैं तो देखा हम लोगों के शरीर में मतलब स्वच्छता अगर रही तब हम
0: हाँ
1: लोगों का जौन भी अगर हम लोगों खाना पीना बना के खाते हैं वो हम लोगों के शरीर में लगी।
0: एकदम सही कहा तू गुलाबो। और आपके बता भी दें कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य के बढ़िया रखे के हो तो हमन के देखा नियमित व्यायाम पे भी ध्यान देवे के चाहिए,
1: बिल्कुल
0: योग भी करें, पर्याप्त नींद भी लें 7 से 8 घंटा। अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखा तनाव मुक्त रहना, सकारात्मक सोच ध्यान लगाना मानसिक रूप से स्वस्थ रखेला,
1: बिल्कुल
0: और जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता के बात करत लो ओकरे खातिर जौन अच्छा पोषण और मने अगर मिली तो निश्चित रूप से जो है कि हम लोगों के शरीर से बीमारी दूर हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा पोषण अपने शरीर में भरपूर जाए एकरे खातिर देखा रंग बिरंगी थाली यानी कि दाल चावल रोटी हरी सब्जी
0: हाँ
1: दही ई सब

0: सेवन करे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हम लोगों ज्यादातर प्रयास करल जाए कि जो दाने जो छिलकेदार अनाज होला ओकर प्रयोग ज्यादा करल जाए, काहे कि ओमे देखा फाइबर रहेला।
1: एकदम सही
0: फाइबर
1: बात
0: रहे,
1: है।
0: अगर हम लोगों के शरीर में फाइबर जाए तो समझ लो कि पेट से संबंधित जो भी समस्या होला वो दूर हो जाला। और जब पेट से ही देखा हर बीमारी उपजाला, जैसे आजकल का नया नया बीमारी एक थे चिनियावा बीमारी हो, शुगर बीमारी जेके कहा
1: हाँ
0: जाला,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: पेट से ही संबंधित होला। अगर हम
1: बिल्कुल
0: लोगों का पेट साफ होत बा, जेकर भी जो नित्य क्रिया हम लोगों का वो सही बा अगर जेकर, तो वो देखा जल्दी कोनो बीमारी ओकरे शरीर में नहीं आवाला।
1: कहेगा मतलब ये है आपका कुल मिला के कि अगर हम लोग अगर स्वच्छता की अपनावल जाइए अगर और पोषण जब शरीर के पूरा मिली
0: बिल्कुल,
1: तभी हमारा
0: तब
1: स्वास्थ्य
0: स्वास्थ्य
1: जो है ना अच्छा रही।
0: बिल्कुल
1: और एकरे खातिर हम लोगन के मिलके जोन करल जी आपस में वो तो ठीक है, पंच भैया बहन लोग भी जागरूक हों।
0: देखा हम लोगों बातचीत के माध्यम से जानकारी लेवल जाला। और देखा
1: बिल्कुल
0: बातचीत के ही माध्यम से अपने पंचायती में जोन डॉक्टर श्रद्धा दुबे जी जुटल
1: हाँ
0: हैं, जोन की एक चिकित्सक हैं महिला व बाल पोषण के लिए चिकित्सकीय सलाह,
1: हाँ
0: उनसे मुन्ना भी है कि भेंट मुलाकात भइल बा। हम तो
1: हाँ
0: कहब ना कि जोन हम लोगन बातचीत करते हैं पंच भैया लोगन सुनत हवा,
1: हाँ
0: लेकिन इनकर भी जानकारी हम लोगन अपने पंचायती में शामिल करल जाए, इनकर
1: हाँ
0: जानकारी सुनल जाए, तो शायद हम लोगन के और भी अच्छे अच्छा जाने के मिली कि
1: बिल्कुल
0: हम लोगन अपने आप के स्वस्थ रखे खातिर का करी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हमें देर कोने बात का इनकर जानकारी सुनल जाए।
1: चला सुनल जाए।
2: श्रोताओं, हम स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारा काम बहुत ही मेहनत और मशक्कत वाला होता है। हम सुचारू रूप से कार्य कर सकें इसके लिए हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपने आहार के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा आहार लें जो पोषण युक्त हो, हमारे शरीर को मजबूत बनाए और हम स्वस्थ रह सकें। तो श्रोताओं, आज हम बातचीत करेंगे अपने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के बारे में कि उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, वे कैसे स्वस्थ रहें और आगे चल के उन्हें कोई रोग ना लगे और अपने कार्य को नियमित अच्छे ढंग से करते रहें। इसके लिए उनको स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें पोषण युक्त आहार लेना चाहिए। अगर पोषण की कमी हो जाती है तो उनके शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर श्रद्धा दुबे, होम्योपैथ चिकित्सक हैं आप, और आपसे हम लोग जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी हमारी ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कि अगर उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, चाहे जो भी वजह हो, तो सबसे पहले तो पोषण का क्या महत्व?
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा दुबे, क्योंकि मैं एक महिला डॉक्टर हूँ इसलिए महिलाओं के प्रति और छोटे बच्चों के प्रति स्वास्थ्य और उनका स्वस्थ रहना अत्यंत जरूरी है। ग्रामीण महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को ज्यादा काम करने की वजह से और उनको पोषण की सही जानकारी नहीं होने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है और इसकी वजह से वो अपने आने वाले बच्चों या अगर वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो उन बच्चों का भी वो ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि वो महिला है और उनको गर्भ धारण करना है। इस स्थिति में उनको एनीमिया ना हो इस बात का उनको स्वयं ध्यान देना चाहिए। एनीमिया मतलब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन किसी भी तरीके से अगर कम होगा तो आपके मासिक धर्म के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी मतलब आपके गर्भवती होने पे बहुत आपका बच्चा भी फिर स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर आप कुपोषित हैं, किसी भी वजह से कुपोषित हैं, तो आप स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। तो स्वास्थ्य में सबसे जरूरी चीज होता है कि आपका पोषण पूरा हो, उसको हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं, संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार बिल्कुल ही बेसिक होता है, जो कि आप रोज का खाना खा रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कब कितना क्या खाना है, यह सबसे जरूरी है। और आपके खाने के बीच का गैप कितना है, ये जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि यह गैप अंतराल जो है वो बहुत ही लंबा हो जाए, कि आप पूरे दिन काम कर रहे हैं और आप दोपहर में खाना खा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
2: जी जी, समय अंतराल निर्धारित होना चाहिए, पोषण युक्त आहार होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, अगर उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो उनके शरीर के ऊपर कौन

0: सचेत हो जाएं। और डॉक्टर साहब, जैसे हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हालांकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे आहार लें जो कि पर्याप्त पोषण भी उन्हें मिल सके और उनके अनुकूल हो।
1: सबसे जरूरी है प्रोटीन लेना। उस प्रोटीन में आप सबके पास, सबके घर में दाल होगी, दाल का सेवन अत्यधिक करें। जितना भी दाल का सेवन करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा फिर आपकी सब्जियां जो आपके घर में मौजूद हों, जैसे कि पालक, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज है पालक, आलू, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, जो आपके घर में बहुत आसानी से मिले वो सारी। और पालक का सेवन आप जितना ही ज्यादा करेंगे आप कमजोरी से उतना ही बचेंगे। उसके अलावा अगर आपके घर में दूध उपलब्ध हो तो आप दूध का भी सेवन रोज करें।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो उनके मौसमी फल हैं, जैसे गांव में तो आमतौर पे जैसे हर मौसम में कोई ना कोई फल मिलता ही रहता है, अगर एक फल भी लेते रहें तो उनको अच्छा पर्याप्त पोषण मिलता रहेगा। गांव की जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, खास करके जब काम ज्यादा हो जाता है तो उनके ऊपर कुछ ऐसे लक्षण जो आपने बताया कि थकान होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, ये सब सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, तो मोटे अनाजों की क्या भूमिका है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? यदि मोटे अनाजों का सेवन किया जाए तो क्या ये पर्याप्त पोषण मिल सकता है?
1: जी, मोटे अनाज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विटामिन B12 के लिए, जो कि एनीमिया ना हो इसके लिए रोकते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं उसमें फॉलिक एसिड नाम का एक तत्व मिलता है जो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जौ खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, इसके अलावा गेहूं और चावल तो आप खा ही रहे हैं, तो फॉलिक एसिड को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है मोटे अनाज।
0: जी, एक चीज और डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण महिलाओं को आप सहेज दें, अक्सर के देखा जाता है कि इस वक्त का खाना किसी दूसरे वक्त खाती हैं, शाम का बना सुबह, या सुबह बन गया तो शाम तक से चलता ही रहता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये सही है या नहीं?
1: सबसे जरूरी ये है कि हमें बासी खाना नहीं खाना है। जब खाना बनाए, जब आपको खाना हो उसके एक घंटे पहले ही वो खाना बना होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: सबसे जरूरी ये है। रात का बचा हुआ खाना सुबह बिल्कुल भी नहीं खाएं, और रात का बना हुआ चावल सुबह बिल्कुल भी ना खाएं। जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, पहले तो वो आपको निमोनिया करने लगेंगी, फिर धीरे धीरे जो उसके पोषण तत्व हैं वो कुछ समय बाद अपने आप उड़ जाते हैं, तो उस खाने का फिर आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
0: जी जी जी, तो बासी खाना खाने से आप बचें, और लाभ नहीं मिलेगा, कहीं हो सकता है उससे नुकसान
1: भी होगा। बिल्कुल होगा, नुकसान होगा, सांस लेने में तकलीफ आने लगेगी, खाना आपने कैसे खुला छोड़ दिया हो तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो उससे आपको उल्टियां आने लगेंगी।
0: एक चीज और, हालांकि देखें सभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं नशा तो नहीं करती हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी हैं जो नशा भी करती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे जरूरी यह है कि महिलाओं को नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो नशा करती हैं तो ये उनके प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए बहुत ही, बच्चे को बहुत इफेक्ट करता है, तो पहले तो आप नशा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नशा करते हैं और आप पोषक तत्व तो भी नहीं खाते हैं तो वो आपको और भी कमजोर करने लगता है, वो नशे आपको और कमजोर करने लगते हैं, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगने की वजह से आपको चक्कर आने लगेगा, और नशा से तो कैंसर होता है ये सभी लोग जानते हैं।
0: नशा तो वैसे भी जो है घातक है, और अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं गाहे बगाहे या जाने अनजाने में किसी भी नशा को लेती हैं तो उनके लिए बहुत ही दुखदायी है। चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारे जो छोटे बच्चे हैं गांव में रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और उनके पोषण के लिए कौन कौन सा आहार उन्हें लेना चाहिए?
1: छोटे बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है कैल्शियम वाली चीजें, जबकि छोटे बच्चे खाते भी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं और उनको सुबह की दूध दिखाएं। कैल्शियम, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनको, उनकी हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी होता है, तो कैल्शियम वाली चीजें खिलाएं। उसके अलावा प्रोटीन उनको दें, प्रोटीन लंबाई बढ़ाने में और बालों के लिए बहुत अच्छा, अहम होता है, बढ़ते हुए बच्चों को

0: वो प्रोटीन और कैल्शियम ने, इसके साथ साथ कुछ विटामिन्स होते हैं जिसमें विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गाजर खिलाएं बच्चे को, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है, रात में दिखना कम होने लगता है। और विटामिन सी संतरा खिलाएं, खट्टे फल खिलाएं जिन्हें इनको स्किन की भी कोई समस्या न हो और हड्डियां भी मजबूत।
1: जी, तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ थी डॉक्टर श्रद्धा दुबे, और आपने महिलाओं के पोषण और बच्चों के पोषण के बारे में विस्तार से बताया, और आपका कहना था कि आप पोषण युक्त आहार लें, अपने आसपास जो भी संसाधन हैं, जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनको नियमित रूप से लेते रहें, खास करके जो मोटे अनाज हैं उनको भी अपने आहार में शामिल करें, बच्चों को विटामिन युक्त आहार नियमित रूप से देते रहें, जिससे वे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और डॉक्टर साहब, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: गुलाबो बहन,
5: हाँ जी रवि,
4: देखा ये महिला व बाल पोषण के लिए चिकित्सीय सलाह डॉक्टर श्रद्धा दुबे जो चिकित्सक रली ना, मुन्ना भैया से फरिया फरिया के बात के लिए, और हम लोग सुनल गल
5: बिल्कुल।
4: और देखा पंच भैया बहन लोग भी सुन लेना, अगर ऐसे माने मान के चलिए अपने के माने की ठीक ठाक रखे गये तो निश्चित रूप से जो है की बर बीमारी से दूर रही है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और इनकर बात सुन के तो हमके बस ये एक मंत्र है
4: हाँ।
5: या कहला एक मुहावरा बा कि पहला सुख निरोगी काया
4: हाँ।
5: और बिना स्वच्छता पोषण बेकार हमाया
4: हाँ।
5: ये बात देखा यार, बिना देखा स्वच्छता के कौनो देखा स्वच्छ आदमी अपन स्वस्थ नहीं रह सकत
4: हाँ।
5: इसे सबसे पहले स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता अगर बा
4: हाँ।
5: तो देखा हम लोगन का जो जीवन बा, हम लोगन का शरीर बा, ये निरोगी रही।
4: और साथ ही साथ आपके बता भी दे कि देखा हम लोग जो माने सब फसली खेती अपने करीला खेती किसानी में माने पारंपरिक खेती उसे अगर हट के अगर माने ओके करते हुए जो ना कि अगर हम लोग औषधि और सुगंधित पौधन का जो है ना कि खेती करी ला तो उसे हमन के देखा और ज्यादा मुनाफा मिली।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: और लागत भी उनमें कम होला। वो तो बंजर भूमि में भी आपके जो है ना कि माने औषधि हो जाए, और जो कहल गला कि वो माने जो औषधि पौधा होला वो के देखा जाए बंदर हो गए, चाहे नील गाय हो गए, चाहे कुछ हो गए, वो सब देखा मतलब कड़ू हो चलते छूतन नहीं।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और उसके बाद रह गए सुगंधित फूल का बात, उनमें देखा यही खासियत ये है कि उनमें भी हम लोगन की ये फायदा है कि अगर हम लोग मेंथा पुदीना एकर इस्तेमाल करी ले तो जाना, तो इसे कहा ना कि आपका जो ना कि वो मंजन जो बनला वो फायदेमंद होला। लेमन ग्रास जो नींबू घास
5: ये कहा चाहत मैं नहीं हम कि देखो अभी जो हम लोग चाय पियत रह लिए जा
4: हाँ।
5: लेमन जो ग्रास जेके अपन
4: हाँ।
5: कौन
4: नींबू घास है
5: हाँ, नींबू घास एके कहल जाला। एके देखा ये बहुत ही पौष्टिक होला, और जाना लू एके पिए से ए मौसम में, जैसे कि अभी हम आपसे शुरुआत में चर्चा करत रही है कि सर्दी जुखाम जैसे समस्या
4: बिल्कुल,
5: और जो गटई में खराश और दर्द वाली समस्या ये देखा अगर एकर काढ़ा बना के सेवन करल जाए तो ये हम लोगों के खातिर बहुत ही पौष्टिक बा। तुलसी का पत्ती हो गई
4: बिल्कुल,
5: और चाहे हम लोगों एके डाल के बनावल जाए, अदरक हो गई, ये सब तो औषधीय पौधा बा। अगर हम लोगन ये सब का प्रयोग करते हैं तो हम लोगन के कहीं ना कहीं हम लोगन के स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, और एकर खेती करे से भी बहुत जो मुनाफा बा मुनाफा हुई।
4: और आपके बता दीजिए मैं जो एक ठो खास होला जैसे तेल माने बनेला वो देखा बेहद महंगा होला, और उसे माने इत्र भी माने कल गल जो सेंट बनेला वो भी जब बाजार में जाला ना तो ओकर देखा दाम बढ़िया मिला ला
5: बिल्कुल।
4: अपामा रोजा जो ऐसे जो तेल बा देखा अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुलाबो एकर बहुत भारी मांग भी है, और एकर कीमत भी देखा बहुत ऊंचा हला।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: अगर हम लोगन के अपने माने गेहूं चावल और साग तरकारी के अलावा अगर जगह जो मिलत हला, चाहे आप कहले कि माने कि पहाड़न में तो हम लोग रहता हिला, अगर बंजर जगह भी हो तो ओमे आपको जो ना कि पौधा कोई भी औषधि पौधा देखा वो भी हो जाए, अगर आप सुगंधित फूल लगाते हैं तो ओमे देखा पानी का भी माने कम जरूरत पड़ेगा।
5: बिल्कुल, और देखा अश्वगंधा हो गई, एलोवेरा हो गई, ये ये सबको भी देखा आजकल हर

0: चीज में जौन भी क्रीम बनत बा, जौन भी चेहरा के लगावे खातिर बनत बा,
1: बिल्कुल
0: वो सब में देखा बहुत ही फायदेमंद बा। और डायरेक्ट जौन एलोवेरा का जौन जेल होला हो, वो भी चेहरे खातिर कहीं ना कहीं, चेहरे खातिर, शरीर के खातिर, बाल के खातिर बहुत ही लाभप्रद होला। और देखे एक एक एकर खेती करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होला,
1: बिल्कुल
0: और देखा मेहनत भी नहीं बा, कम जमीन में काफी अच्छा एकर मुनाफा हम लोगों के प्राप्त हो सकला।
1: वो तो देखा अपने खेत में अगर माने बाग बगीचा में करा था हम लोग जैसे जो गमला में रखा लगा के रख ले एलोवेरा कुमारी उसे देखा ये है कि अगर के हम लोग छीले अपने माने कल गला ना कि माने सुंदर बने बदे जो न की लोग अपने
0: हाँ,
1: चमकदार
0: इस्तेमाल करेला
1: इस्तेमाल करेला और ओकर माने अगर पियत भी है ना यहाँ तक की ओकर हलुआ भी बना के लोग खालन
0: वो पौष्टिकता के वजह से देखा एकर सेवन हर तरीका से लाभप्रद बा। साथ में जीरा बहन एक पेड़ बा सहजन का, सहजन एक ऐसा पेड़ बा, ओकर चाहे आप डाल पतई का बात कर ले, चाहे ओकर छाल के बात कर ले, ओकर फर के बात कर ले, और चाहे ओकर फूल के बात कर ले, इन हर तरीका से वो इस्तेमाल होला और शरीर के खातिर बहुत ही फायदेमंद होला। ओमें इतना पौष्टिकता होला कि हर जगह में चाहे डॉक्टर हो चाहे वैद्य हो, ये हम लोगों के सलाह देवल जाला कि ये जब सहजन का समय आवला तो हम लोगों सहजन के फल का सेवन मतलब करल जाए। ओकर पतई उबाल के पिए से हम लोगों का जो भारी वजन का जो लोग होला वो अगर ओकर पतई सुबह सुबह खाली पेट उबाल के पियत हवन तो वो शरीर के खातिर भी बड़ी फायदे बा। और पेट में जो हम लोगों के लीवर होला ना, लीवर के खातिर भी बहुत ही फायदेमंद बा सुबह सुबह सहजन के पतई के उबाल के पीना।
1: बिल्कुल।
0: और देखा है अगर हम लोगों के स्वस्थ रहे के बाद तो हम लोगों के औषधीय पौधन का जो खेती बा ना एकरे तरफ हम लोगों के आगे बढ़े के जरूरत बा। अगर हम लोगों करत है 4 पैसा के मुनाफा भी बा और अपने आप के भी हम लोगों स्वस्थ रखल जा।
1: बिल्कुल। खेती किसानी के साथ साथ अपन पशु चौवा के भी जो करतीला अगर उससे हट के अगर एक एक करतीला तो इनमें भी देखा मुनाफा काफी है। और हम तो कहला की हम लोग किसान अला तो जगह तो हम लोग के सही है, कोशिश यही करे कि ज्यादा से ज्यादा औषधि और आपको सुगंधित पेड़ कमाने लगाई और ओकर मुनाफा उठाई। अब बाजार में देखा ओकर भाव भी बढ़िया मिलेला और देखा आज बल्कि कल गला ना कि यही से संबंधित जो जानकारी भी हमारे पास है गुलाबू बहन कि माने सफलता की कहानी।
0: अच्छा अच्छा।
1: फूलों की खेती बनी सफलता का माध्यम।
0: बिल्कुल।
1: वसीम अहमद जो प्रगतिशील युवा किसान है इनसे अपन जो जगत नारायण भैया बातचीत कैले हन हम तक कहा कि बिना देर के लिए अगर सुन लेवल जाए तो कैसन रही।
0: बिल्कुल चले सुनल जाए।
1: चला
2: श्रोताओं, व्यक्ति यदि परिश्रम करे तो कभी भी किसी भी स्थिति में वो अच्छा अर्जन कर सकता है। और आज अगर हम बात करें तो हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत कोन ब्लॉक के खरौंधी गांव में हैं और यहां हमारी मुलाकात वसीम अहमद जी से हो रही है। आप केवल साधारण युवा नहीं हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छे योग्यताधारी हैं, बीए बीटीसी किए हुए हैं और शिक्षक के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इससे पहले एक भी दिन व्यर्थ न गंवाएं, इस उद्देश्य से आपने बहुत ही अच्छा युक्ति अपनाया है जिससे आप सजावटी फूल पत्ती पौधों का रोपण करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आपसे ही बातचीत होगी कि किस तरीके सजावटी फूल पत्ती और पौधों का आप देख रेख करते हैं, कैसे प्रेरणा जगी और इसमें कितना लाभान्वित स्वयं हो रहे हैं और लोगों को भी कैसे लाभ प्रदान करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो वसीम जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में भी पढ़ा है कि गेहूँ बनाम गुलाब, जहाँ गेहूँ से आहार के रूप में प्रयोग करता है आदमी भोजन जीने के लिए, तो वहीं सुंदरता के लिए फूल और जो है कि जो पत्ती और पर्यावरण संरक्षण में भी पौधों का बहुत ही योगदान आदमी समझता है। और उसका हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि एक तरफ गाय बहुत बंधे हुए हैं, बकरियाँ हैं, मुर्गी है, खेती किसानी के साथ साथ इतना अच्छा पर्यावरण से घिरे हुए कि जो है कि चारों तरफ फूल बागवानी बिल्कुल हरा भरा से लगाया, नीला पीला सफ़ेद हर तरह के फूल खिले हुए हैं। ये आप कब से कर रहे हैं फूल बागवानी का काम?
3: जी, सबसे पहले किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
3: मैं वसीम अहमद, ग्राम खरौंधी कोन सोनभद्र से। ये हम 15 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं
2: जी।
3: शुरुआत ऐसी दो चार पौधों से हुई। किसी ने इमरजेंसी में दो चार माला बनवाए हमसे
2: जी,
3: उन्होंने खुशी से 10 रुपए दिए, वहीं से मेरा शुरुआत हुई
2: जी।
3: फिर हमने इकट्ठे

0: लगा दिया गेंदे के फूल। फिर वहीं से धीरे धीरे मेरा जो है पढ़ाई के साथ साथ ये फूलों का भी रुचि, इसमें हमारे घर का सदस्य जितने भी हैं, मम्मी पापा जितने भी हैं, सबका योगदान काफ़ी है अब तक।
1: अच्छा वसीम जी, इसमें देखते हैं कि जैसे शादी विवाह हो गए, या तो जब इस समय हर समय जो है कि लोग अपना साल साल भर में बर्थडे मनाता है उसमें भी, लेकिन तब चार चांद लग जाती है वो कार्यक्रम जब उसमें फूलों का, पत्तियों का,
0: जी
1: पौधों का
0: जी जी
1: सजावट होता
0: जी
1: है।
0: ओरिजिनल फूलों का
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: उपयोग
1: अब
0: उसमें किया जाए,
1: खुशबू भी और ताजगी भी।
0: जी।
1: तो आप कौन कौन से ऐसे सजावटी फूल, पत्ती, पौधे रखे हैं जिससे लोगों के मन मुग्ध कर पाते हैं?
0: फूलों में सबसे बड़ा उत्पादन गेंदा का, फिर रजनीगंधा, बेला, गुलाब, कुंद, सूरजमुखी, कुछ सीजनली फूले हैं जो चेरी, गुलदाउदी, जरबेरा, पचरंगी, ये सब सीजनली फूल है।
1: जी जी जी
0: और एनी टाइम खिलने वाली रजनीगंधा और गेंदा, गुलाब, ये
1: अच्छा
0: आपको एनी टाइम फूल मिलेगा।
1: जी जी जी
0: हम लोगों ने इसकी खेती काफ़ी मात्रा में किए हैं और ये सब जो है शुरू हुई, यहाँ के लोग पहले बहुत ऐसी काम चलाते थे, हम लोगों ने शुरू किए तो इसकी फिर मांग होने लगी धीरे धीरे। वैसे
1: जी
0: देखते देखते हर शादी विवाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी जो है
1: जी जी
0: काम आता है इसमें
1: हाँ
0: फूलों
1: हाँ हाँ
0: की।
1: अच्छा, इसमें जैसे लाल, हरा, गुलाबी, पीला, नीला, तरह तरह के सफ़ेद, ये पुष्प तो होते हैं,
0: जी,
1: लेकिन जहाँ हरियाली अगर ना हो
0: हाँ
1: तो वहाँ सजावट अपूर्ण माना जाता
0: जी
1: है।
0: जी हम
1: यहाँ
0: लोगों ने
1: तक कि
0: पत्ती
1: कलर
0: का भी खेती किए
1: जैसे
0: हुए हैं।
1: कलर लोग करता है, ड्राइंग बनाते हैं
0: नहीं तो
1: लोग,
0: हम लोग नेचुरल जो है काम करते
1: तो
0: हैं।
1: ड्राइंग में होता क्या है कि फूल बनाते हैं लेकिन उसमें लोग पत्तियाँ भी बनाते हैं, तो सजावट में पत्ती का भी बहुत
0: जी,
1: उपयोगिता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: फूल के साथ साथ पत्ती का भी उपयोग
1: जी
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: हम लोगों ने रिका पाम, घोड़ा पाम, साइकस, इलायची पत्ती, कामनी पत्ती, पैराग्रास, बारीक पत्ता, झास पत्ता, मोर पत्ता, अशोक का पत्ता,
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: हम
1: ये भी
0: लोगों ने
1: सब
0: जी
1: हैं।
0: जी इसके हम लोगों ने 1 बीघे में पूरे पत्ती का ही सिर्फ खेती किए हैं। इसका एक
1: जी
0: बीघा का
1: जी
0: अलग, बाकी तो अलग अलग भागों में सब है। सबसे ज़्यादा मुख्य गेंदे का भी है।
1: तो ये फूल कितने बीघे में,
0: 12-13 बीघे में फूलों की खेती हमने किया है।
1: इतना अधिक क्षेत्रफल में फूल है, पत्ती है और जो है कि पौधे भी हैं
0: जी
1: सजावटी, तो
0: जी
1: ये कैसे कर पाते हैं, अकेले कर लेते हैं?
0: नहीं, इसमें वर्कर भी चाहिए। पास
1: जी
0: पड़ोस के 5-6 वो लेडीज वर्कर हैं जो फूलों की देख रेख, उसकी कोड़ाई, निराई गुड़ाई जो भी है इसकी,
1: जी
0: मेड़ बना ताकि सिंचाई अच्छे से कर सकें, ये वर्कर हैं। और सीजन में तो ऐसे भी जो रखना पड़ता है वर्कर,
1: अच्छा
0: काफ़ी
1: जी
0: ज़्यादा 20-25 लोगों के हमने जो है रखे हुए हैं।
1: हाँ, इतने लोग के रोजगार
0: जी
1: के भी व्यवस्था
0: जी
1: है।
0: पास पड़ोस के जो गांव के हैं हमारे, वो सबको भी ये से लाभ है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: जी
0: फूल तोड़ने का, तोड़ने से लेकर गांथने तक, पहुंचाने तक का भी हमने सबका जो है बाधा हुआ है फिक्स।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: जितने गांथेंगे फूल
1: हाँ
0: उसकी जो है बेनिफिट मिलेगा उनको।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: इससे काफ़ी लाभ है।
1: हाँ, तो ये मतलब रोजगार की भी संभावनाएं
0: जी
1: तमाम
0: एकदम
1: आ जा रही
0: रोजगार
1: हैं।
0: इसके सामने तो फेल ही मानिए इसको।
1: हाँ
0: जी
1: हाँ अच्छा,
0: जी
1: मतलब नौकरी की
0: हाँ
1: भी
0: हाँ
1: अपना
0: एकदम
1: लग
0: एकदम, वो तो एक फिक्स है, लेकिन इसकी कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है।
1: जी
0: आप
1: जी
0: चाहे जितने जो है आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपका उतना ही इससे जो है आप क्रय कर
1: तो
0: सकते
1: ये तो
0: हैं।
1: बहुत फूल दिख रहे हैं,
0: जी तो
1: बहुत
0: हम
1: उत्पादन
0: लोगों
1: हो
0: ने
1: जाता है।
0: झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, सोनभद्र से तो है ही हैं, ये सारा जगह हम लोगों का मांग होता है।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: हम लोग डिलीवरी कर देते हैं, जहाँ जैसे मांग हुआ वहाँ पहुँचा देते हैं, लोग आ भी जाते हैं, जैसे ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
1: ये जैसे फूल के खेती करना है तो के लिए भूमि के चयन कैसा करना होता है?
0: कुछ नहीं, जो भूमि है उसी पे जो है वो हो जाएगी। कोई ऐसा ऐसा नहीं कि एकदम वो अच्छी काली मिट्टी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फूलों की खेती जो है कर सकते हैं, नरम मिट्टी हो जो है, और उसमें जो खाद भी ज़्यादा नहीं पड़ता है,
1: जी जी
0: हल्का सा
1: जी
0: एक बार बांधते समय जो मेड़ बनता है उसी समय देकर बांध दीजिए, बाकी सिंचाई करते रहिए
1: अच्छा,
0: आपका।
1: मेढ़ी में करना है।
0: जी, मेड़ में उसके जड़ तक थोड़ा सा वो डाई और वो खाद यूरिया जो भी है उसको डाल दीजिए, हो जाएगा आपका काम।
1: जी,
0: जी
1: अच्छा, ये जो आपने बताया सजावटी पत्तियों के बारे में, जैसे रिका पाम हो गया, घोड़ा पाम हो गया, इसका सजावट कैसे करते हैं?
0: ये सब जैसे बड़े अवसरों पे जो भी मतलब कार्यक्रम है, नेता का भी इसमें प्रोग्राम चलता है, तो इसमें बुके जो गुलदस्ता होता है हाथ में,
1: जी
0: हैंड
1: जी
0: बुके,
1: जी
0: इससे
1: जी
0: अच्छे से बन जाएंगे पत्ती फूल सब। फूल है वहाँ पत्ती का भी जरूरत होती है,
1: हाँ बिल्कुल
0: बिना
1: बिल्कुल,
0: पत्ती
1: बिना
0: का जो
1: पत्ते
0: है
1: के फूल
0: फूल का,
1: अधूरा है।
0: जी
1: हाँ बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पत्ती का भी जो है अच्छे से

0: इसकी भी डिमांड है। अब बिना
1: तो
0: पत्ती का फूल की सजावट हो नहीं सकता अच्छा से।
1: वास्तविक में कहा जाए तो धरती का श्रृंगार जितना भी तरह
0: हरा
1: के
0: भरा।
1: रंग हो वो सारे रंगों से सुशोभित आपका मतलब ये घर के चारों ओर से लगाए तो खेतों में भी दिख रहे हैं।
0: जी
1: और ये जो है कि अशोक का तो हर लोग लगाता है, लेकिन इसके पत्ते का प्रयोग कैसे करते हैं आप?
0: अब तो सजावटी में देखा जाए तो सबसे पहले पत्ते का ही हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद फूल से सजाते हैं। जी हम लोग जा जाकर जो चीज़ भी बनाना हो सजाना हो पहले पत्ती का उपयोग करेंगे। पत्ती का माला भी, माला में भी उपयोग होता है, गजरा माला हो गया या ऐसे हो गया, डिजाइन देना हो। बिना पत्ता का डिजाइन आप जो है अच्छे से नहीं दे पाएंगे।
1: जी,
0: जी
1: तो इसका भी सब
0: जी
1: काम
0: जी
1: करते हैं।
0: हाँ।
1: और सबसे बड़ी बात कि स्वतः उत्पादन करके और ये सब करना
0: या
1: होता
0: ऐसा
1: है।
0: नहीं कि ज़्यादा जो है ज़मीन हो तभी कर पाएँ, एक कट्ठा हो दो कट्ठा हो आप इतने में भी जो है वो कर सकते हैं इसकी खेती। जी कोई ज़रूरी नहीं कि इतना आप सारा वो लगाएं, सिर्फ गेंदे का ही खेती से आप कर सकते हैं 500-1000 रुपये जी डेली का आमदनी आ सकता है।
1: तो ये पौधे कहाँ से लाते हैं?
0: ये जैसे बनारस से हो गया, कलकत्ता से हो गया, ज़्यादातर हम लोग कलकत्ता से, तो वहाँ अच्छी बीज मिल जाती है। जी
1: बड़ा बड़ा फूल का।
0: जी जी बड़ा बड़ा फूल का, चैती का हो गया, मतलब जो भी इसकी अच्छी प्रजाति हम लोग वही यूज करते हैं
1: तो कब
0: कि 3 महीना फूल उससे ले सकें।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो
0: इसके
1: एक
0: जितने
1: सीजन में मतलब एक वर्ष में कितने
0: जी
1: बार फूल रोपण करना होता है?
0: गेंदे की तो हम लोग 2 बार करते हैं,
1: अच्छा।
0: एक जुलाई में, एक ये जो है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी जनवरी तक भी। जैसे जैसे वो रोपते हैं वो जो है इसकी वो लगाते हैं वैसे वैसे फूल प्राप्त होती है।
1: अच्छा, केवल अगर फूल बेचना चाहे, चूंकि आप तो माला भी बनवा के बेचते हैं, लोगों को
0: जी
1: बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है,
0: जी
1: अब अगर ऐसे सीधे फूल बेचा जाए तो कैसे किलो बिक जाता है?
0: ये तो 100 रुपये के जी। जी अब आपके ऊपर है, आपको निर्धारित करना है मेरा लागत कितना लगा। जी आप अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं, 50 रुपये के जी भी बेच सकते हैं, 100 रुपये गेंदा का वो बेच सकते हैं। गुलाब हो गया तो ये थोड़ा महंगे जाएंगे। जी
1: तो आमदनी अच्छी है।
0: जी आमदनी अच्छी है, हम लोगों ने काफ़ी जो है इससे उभरे हुए हैं।
1: जी, तो
0: जी
1: वसीम जी, इतने अच्छे सुझाव के लिए, इतने अच्छे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: जीरा बहन,
2: बिल्कुल
1: कितना बढ़िया देखा अपन, हम लोगन जानकारी सुनल गई और साथ में संदेश भी सुनल गई।
2: हाँ।
1: और इतना अच्छा जानकारी अपन फूलों की खेती बनी सफलता के माध्यम से बतौन अपन वसीम अहमद जी, जो उनके युवा प्रगतिशील किसान हवा।
2: बिल्कुल,
1: और उनके देवल जी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम देखते हैं कि धन्यवाद के संगे संगे हमार नजर आपके हाथ में जो पड़ल पाती बा ऊपर भी पड़त बा कि आपके हाथ में अभी कहाँ से पाती आपके मिलल बा। और हम तो कहब कि पाती का है और अगर किस बाजार भाव बा।
2: हाँ,
1: तो अपने पंच भी लोगन के भी बांच के बतावे।
2: बिल्कुल, तो देखा आज के बाजार भाव के जो मंडी बा मधुपुर से पुनवासी चौहान भी भेजले हैं।
1: अच्छा,
2: कुंतल में बा लाल आलू आपका 1200,
1: अच्छा
2: सफेद आलू 1000, टमाटर 3000,
1: हुँ,
2: परवल 4000,
1: अच्छा
2: बोड़ा 2000,
1: हुँ,
2: गोल बैगन 4000, लंबा बैगन आपका 3000, धनिया पत्ती आपका जो ना की 8000, और मिर्चा आपका 2200 रुपया
1: कुंतल।
2: हाँ कुंतल, और लहसुन 13000 रुपया कुंतल बा, प्याज आपका 4200, भिंडी आपका 2000, करेला आपका 3000, अखेक्सा जोन बा देखा हाईब्रिड वाला जोन बा वो 5000 बा, देसी वाला 13000 बा, और आपका जो ना की नेनुआ 2500, लौकी 1800, कोहड़ी 1700, शिमला मिर्च आपका 5000, मूली 3000,
1: बिल्कुल
2: खीरा आपका जो ना की 2500, कुंदरू आपका देखा 1800, सूरन 4000, अरुई 2500,
1: अच्छा
2: बंडा 2500, अब पालक भी देखा 2500 है, अदरक आपका 10000 बा, और देखा आपके जो सैकड़ा में बा वो बा देखा फूल गोभी 3000,
1: अच्छा सैकड़ा,
2: हाँ सैकड़ा।

0: टकरे में। और पत्ता गोभी आपका जो ना कि 2200 रुपया बा, और
1: अच्छा।
0: नींबू आपका 300 रुपया बा। ये आज के मधुपुर के ताजा बाजार भाव।
1: पूर्णवासी चौहान भैया के देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद भी ऐसे नहीं एक मन फेर के माध्यम से अगर हो तो का पूछे के है। तो देखो लीलावती सिंह बहन अपन सोहर सुनावल चाहते हैं, तो बिना देर के लिए आवे इनकर सोहर सुनल जाए।
0: चलो सुनल जाए।

0: हाँ
1: देखा
0: गुलाब
1: देखा इतना बढ़िया सोहर अपन लीलावती सिंह बहन सुनावत हई, और देखा कृष्ण भगवान का छठी के उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोगन सोहर सुनल गई,
0: बिल्कुल
1: और देखा इनके भी देवर जे बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा हम लोगन जब पंचायती में जुटल जाला ना, तो देखा ऐसे ही मन फेर कुछ जानकारी कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर भी जुटल जाला, और पंच भैया लोगन भी जब जुटलन हम लोगन का बातें बात का जो सुनलन और ओपे अमल करलन तो उनके भी बड़ी फायदा होला। और अब हम तो ये कहब ना कि हम लोगन भी देखा साक्षरता इतना आगे बढ़ चुकल बा कि अपने बचपन के चाहे हम लोगन भी अब शुद्ध हिंदी बोलल हम लोगन शुरू करल जाए।
0: बिल्कुल
1: तो हम लोगन जैसे कार्यक्रम तो भोजपुरी अपने पंच भैया लोगन भोजपुरी में ही हम लोगन कार्यक्रम करल जाला,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुद्ध हिंदी हम लोगन के अपने जीवन में उतारे के चाहे, शुद्ध हिंदी बोल चाल के भाषा में इस्तेमाल करे के चाहे, कहे की अपन हम लोगन का जौन भी शुद्ध हम लोगन भारत से जुड़ल देश से है तो हम लोगन शुद्ध हिंदी हम लोगन का मातृभाषा बा।

0: मातृभाषा के हमेशा याद रखल जाला
1: एकदम सही बात
0: और
1: हो।
0: बोल चाल के भाषा में भी हमेशा इस्तेमाल करल जाए। यही बातें के संगे हम तो कहो कि अपन पंचायती यहीं से मेटल जाए।
1: हाँ।
0: फिर होई देर भेंट मुलाकात बढ़िया बढ़िया बात तब तक चलल जाए।
1: सब
0: तो सब पंचन
1: की
0: के राम राम,
1: राम।

श्रोताओं, ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस से। गीत को लिखा है अनजान ने और इसकी धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाजें थी लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। गीत लिखा था अनजान ने और इसकी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए आज सुनिए दांतों की आम समस्या और समाधान विषय पर डॉक्टर दिव्यांशी सोनी से बबीता बत्रा की बातचीत।
1: हम सब चाहते हैं कि हमारी मुस्कान हमेशा खूबसूरत और स्वस्थ बनी रहे, लेकिन अक्सर हम दांतों की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में दंत चिकित्सक डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले दांतों की समस्याओं के बारे में जानते हैं आपसे कि ये और क्या उम्र के साथ बदलती भी हैं?
2: दांतों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है दांतों में झंझनाहट होना।
1: जी,
2: अक्सर सुना होगा कि लोगों के दांत में ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, मीठा लग रहा है। दूसरी समस्या है मसूड़ों से खून आना, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, शायद ब्रश करते हैं खून आता है, नॉर्मल चीज लग गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा, मुंह से बदबू आना, टेढ़े मेढ़े दांतों का होना या तो दांतों में सड़न होना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि दांत इवन घिस जाना, अगर दांत घिस गए हैं, दांतों के बीच में गैप होना, ये सारी कुछ प्रमुख दिक्कतें हैं जो अभी आम जनता में देखने को मिलती है।
1: जी जी जी। उम्र के साथ मतलब कुछ बदलती है कि छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादा है और बड़ों में ये बीमारी ज्यादा है?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दांत की जो पहली सुरक्षा लेयर है, एनामल जिसको कहते हैं, वो ब्रश करने के दौरान वो घिसती ही है। तो उम्र के साथ साथ दांत का पीला होना और दांतों में झंझनाहट होना, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: तो ये बच्चों में कम दिखती है, अगर बड़ों में देखें, अगर सब कुछ ठीक है उसके बावजूद दांत घिस जाते, ये बड़ों में ज्यादा देखने को मिलता है।
1: और ये दांत में कीड़ा लगना, इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और कैविटी से बचने के उपाय?
2: देखिए, पहले तो एक ये मिथ मैं हटाना चाहूंगी कि दांत में कोई कीड़ा भी लगता है। दरअसल
1: अच्छा।
2: दांत में किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होता।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जब हम कुछ मीठा या गर्म या तो चटपटा चिपचिपा कुछ खाते हैं तो हमारे दांत की सतह पे चिपक जाता है।
1: अच्छा।
2: फिर हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को, उस मीठे को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड अगर लंबे वक्त तक दांत की सतह पे चिपका रहा तो दांतों को गला देता है, जिसकी वजह से कैविटी होती है।

0: तो दांत में कीड़ा लगना ऐसा कुछ होता नहीं, दांत में कैविटी जरूर होती है, वो भी चिपचिपा मीठा खाने की वजह से, अच्छे से ब्रश ना करने की वजह से। सिर्फ ब्रश करना जरूरी नहीं होता, नियमित रूप से 2 मिनट तक 2 टाइम ब्रश करना जरूरी होता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है। यदि हम अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रख रहे, हम हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ मीठा चिपचिपा कुछ खा रहे हैं, हमारे मुंह की सफाई नहीं सही से, ये सब बहुत प्रमुख कारण होते हैं कि हमारे मुंह में कैविटी हो जाती है। फिर खाना फंसने लगता है, इसकी वजह से भी कैविटी होती है। अब बचने की बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जाए, बचाव का सबसे बड़ा तरीका यही है कि 2 टाइम ब्रश करें, अच्छे से ब्रश करें, नियमित रूप से अपने मुंह की सफाई रखें, खाना खाने के बाद कुल्ला करें, और रात में सोने से पहले फ्लॉसिंग जरूर करें।
1: अच्छा,
0: ताकि जो खाना दांतों के बीच में उपस्थित है वो हट जाए और आराम से आप सो पाए।
1: तो और मान लीजिए वो कैविटी हो ही गई, तब क्या किया जाएगा?
0: अगर कैविटी हो गई है तो आपको पहले तो सेंसेशंस फील होंगे, झंझनाहट महसूस होगी, ठंडा पानी, हमने जैसे ठंडा पानी पिया वैसी झंझनाहट हुई, और जैसे हमने अंदर गटक लिया वो ठीक हो जाता है, उस समय लग जाता है। तो ये हमारी बॉडी हमें अलार्म देती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अब एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें अपने डेंटिस्ट को मिलना है। आप अपने डेंटिस्ट से तब मिलिए और उसका फिर आपको सही उपचार पता लगेगा, ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े ना और दर्द में कन्वर्ट ना हो। जी,
1: एक प्रश्न मेरा ये भी है कि अगर अब मसूड़ों की हम बात करते हैं आपसे, तो मसूड़ों से खून आना और कई बार स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों में ना, सूजन सी लगनी लगती है, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली बात फिर वही है कि अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो जाहिर सी बात है दांत को कवर कौन करता है? मसूड़ा करता है। तो अगर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो कहीं ना कहीं वो मसूड़ों में सूजन आएगी, और अगर मसूड़ों में सूजन है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ये काली पीली गंदगी के जमा होने की वजह से तो नहीं है। टेढ़े मेढ़े दांत यदि होते हैं तो उनकी सफाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी मसूड़े सूजते हैं, ब्लीड करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमने ब्रश किया, चोट लग गई होगी इसलिए खून आ रहा है, ये तो नॉर्मल है। पर अगर सिर्फ एक ही जगह मसूड़े से खून आ रहा है और बाकी जगह से नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि वहाँ के मसूड़े ऑलरेडी सूजे हुए थे, तो उसकी जांच करना जरूरी है। फिर पूरा मामला ही इसके इर्द गिर्द घूमता है कि हम अपनी मुंह की सफाई कितना अच्छे से रख रहे हैं, और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लॉसिंग करना।
1: अच्छा,
0: रात में सोने से पहले एक बार फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। फिर मसूड़े जो सूजते हैं, इनका एक और बहुत प्रमुख रीजन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज।
1: अच्छा,
0: अगर आपको मधुमेह है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, 200 तो तब भी ठीक, लेकिन 250-300 के ऊपर अगर आपका शुगर है तो कहीं ना कहीं ये तय बात है कि आपके मसूड़े वो ढीले होंगे, फिर ये पायरिया का एडवांस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे।
1: अच्छा,
0: तो मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए फ्लॉसिंग करना रेगुलरली। अच्छा, और फिटकरी के कुल्ले, चुटकी भर फिटकरी आधे कप पानी में लेकर 10 दिन में एक बार।
1: अच्छा,
0: ये किया जा सकता है, इससे मसूड़े अच्छे होते हैं, टाइट।
1: तो मतलब ऐसा नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी?
0: अच्छा, बहुत गर्म हमें नहीं चाहिए, गुनगुना नॉर्मल पानी में चुटकी भर फिटकरी डाल के कुल्ला किया जा सकता है, तो उससे मसूड़े थोड़े स्वस्थ होते हैं। बाकी ब्रशिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है कि क्यों खाना फंस रहा है तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, तो बहुत शुरुआती स्टेज में आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है।
1: और डॉक्टर दिव्यांशी जी, अक्सर दांतों में जैसे हमने शुरू में आपने बात की कि वो ठंडा गर्म लगता है,
0: जी
1: क्यों लगता है और इसको कम करने के लिए क्या उपाय है?
0: कि ठंडा गर्म लगने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, अगर हम बच्चों में या फिर यंगस्टर्स में बात करें, 30 साल 35 40 साल तक के जो लोग होते हैं, तो वो जब ध्यान नहीं देते हैं अपने दांतों की सफाई पे और खाना वही चिपका रह जाता है और या तो खाना फंसता है तो वहाँ पे कैविटी हो जाती है। इसकी वजह से खाना फंसते फंसते वहाँ पे कैविटी हुई, दांत की पहली जो लेयर है, जो पहली सतह है, इनामल जिसको कहते हैं, जो हमारे दांत को प्रोटेक्शन देती है, वो घिस जाती है, और जैसे ही सेकेंड लेयर आएगी झंझनाहट शुरू हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो इससे बचने के लिए पूरा ही फिर वही वाली बात है कि आप कितनी अच्छी मुंह की सफाई रख रहे हैं, कितना आप ध्यान दे रहे हैं मेरा खाना कहीं फंस तो नहीं रहा, और अगर फंस रहा है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस पे अगर हम ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी लंबे टाइम पे। अब अगर हम बुजुर्ग लोगों में बात करें तो उनकी दांत की पहली लेयर, जाहिर सी बात है हम 365 दिन ब्रश करते हैं, जिनके दांत भी अच्छे हैं लेकिन लेयर घिस गई है, तो उनकी जब सेकंड लेयर आती है उनको झंझनाहट होती है, तो उन केसेस में हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक एंटी सेंसिटिविटी

0: टूथपेस्ट हम रिकमेंड करते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वास्तव में यही प्रॉब्लम थी कि कहीं फिर हाँ। सड़न हो रखी है या कुछ और मामला है, तो इस बात को तय करना पड़ता है।
1: जी जी
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि ये RCT ये कब करानी पड़ती है?
0: जी देखिए, RCT मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों के नसों का इलाज। जब हमारे दांत में खाना फंस रहा है, हमें झंझनाहट हुई, ठंडा पानी लगा, हमने ठंडा पानी पिया और तुरंत आराम मिल गया, जैसे ही अंदर गया 10 सेकंड बाद आराम मिल गया, हमने इग्नोर किया, हमने उसको 6 महीने इग्नोर किया। अब हमको गर्म पानी भी लगने लगा है और मीठा भी लगने लगा है, और जब मीठा और गर्म लग रहा है तो वो 1 घंटे तक वो प्रकरण चलता है, वो झंझनाहट रहती मीठा और गर्म खाने के बाद, पर अब ठंडा पानी से आराम मिल रहा होता है, तो हमें लगता है कि जैसे ठंडा पानी से आराम मिल गया वैसे गर्म से भी आराम मिल गया। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अब गर्म से या फिर मीठे से झंझनाहट है, मतलब कि आपकी जो दांत की नस है वो इरिटेट हो रही है, उसको अब दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। ये दिक्कत अब 1-1 घंटे तक चल रही है। दांत की समस्या हमेशा ही, अगर एक बार शुरुआत हो गई, दांत में अगर सड़न शुरुआत हो गई है, तो जब तक दांत की सड़न को हम अच्छे से निकाल ना दे वो ठीक नहीं होती। लेकिन अगर हम इग्नोर करें, 6 महीने और बीत जाए तो अब दर्द उठता है। जब दांत की नस पूर्णतः खुल जाती है तब दांत में दर्द होता है, और उस दर्द का इलाज उस नस को निकाल के, उसको क्लीन करके, उस नस के इलाज से ही होता है, जिसको हम RCT कहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो कभी भी कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी केस सीधा RCT में नहीं जाता है। अच्छा। वो एक मरीज के बहुत लंबे वक्त तक एक इग्नोरेंस की वजह से वो केस RCT में बदलता।
1: अच्छा।
0: है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, ताकि अगर शुरुआत में ही दिक्कत पता लग जाए तो इतना आगे तक परेशानी होगी ही
1: नहीं।
0: जी।
1: और अक्सर बच्चों में देखते हैं दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं,
0: जी,
1: तो इसका क्या कारण है और क्या हर उम्र में वो ठीक हो सकते हैं?
0: देखिए, दांत टेढ़े मेढ़े होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख वजह तो ये है कि जो दूध के दांत है या तो जल्दी झड़े नहीं, अपने समय पे झड़े नहीं, या तो अपने समय पे वो आए नहीं, जिसकी वजह से जो उनके नीचे दूध के दांत के नीचे होते हैं हमारे परमानेंट दांत, उन वो नहीं आ पाते, वो अपनी जगह बदलते हैं, जगह ढूंढते हैं और उसकी जगह आते हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांत जो बच्चों में हैं, उनकी सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि दूध के दांत अपने समय पे या तो निकले नहीं या तो वहां पे रह गए। अब टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज 7 साल की उम्र से कराया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: 7 साल में अगर हमें लग रहा है कि बच्चे के दांत कुछ ठीक नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। हो सकता है एक छोटा सा अप्लायंस, एक मुंह में पहनने के लिए एक सामान देंगे जो कि आसान होता है बच्चों के लिए भी पहनना, और उससे उनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पे चले जाएंगे। हम उनमें ऐसा फोर्स डालते हैं कि दांत अपने आप उस जगह पे आ जाएंगे,
1: अपनी जगह पे आ
0: जाएंगे। जी।
1: जैसा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से जाना कि दांतों की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय पर सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर देवयांशी सोनी जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दांतों की आम समस्या और समाधान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे दंत चिकित्सक डॉक्टर दिव्यांशी सोनी से बबीता बत्रा की बातचीत। हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क होंगे 4 लेन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लखनऊ कानपुर समेत प्रदेश के 10 स्टेशन परियोजना में शामिल। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का वाराणसी में शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। कहा, हर राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। और यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में बदलाव। विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा खुद लेगा बोर्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा यातायात वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें दिल्ली से हावड़ा रूट, उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को कवर करेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली से गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, जबकि दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर आगरा और झांसी स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग 40% ट्रैफिक होता है और लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: कैबिनेट ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। वाराणसी में आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष की थीम मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी को जन भागीदारी से जोड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ ग्राम पंचायत, परिवार और पूरा समुदाय अपनी जिम्मेदारी समझे, तभी इसका वास्तविक असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का बचपन स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित होगा।
2: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।
3: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में 15 करोड़ रुपए की लागत से खोले गए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया। मेरठ के बाद ये देश का दूसरा बासमती और जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का लाभ पीलीभीत ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के

0: किसान भी उठाएंगे।
1: जनपद के किसान, हमारे नौजवान, हमारे उद्योग जगत के लोग इस केंद्र का फायदा उठाएंगे और जो इस सरकार का डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का प्रण है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने, किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का और हम लोग कैसे दायरा बढ़ा सके, वो ये केंद्र साकार करके देगा।
0: कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि एपीडा के इस केंद्र का लाभ प्रदेश के 29 जिलों को किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में जीआई टैग मिला है। उन्होंने इस केंद्र को किसानों की आमदनी दोगुनी करने की एक खास कड़ी बताया। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही श्री गांधी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान, गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है जिससे मरीजों को सीनियर और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अनुभव का फायदा मिल सके।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की उम्र है वो चिकित्सीय कार्य के लिए 70 वर्ष तक कर दी गई है, यानी अपने 70वें वर्ष तक उम्र के वो सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने इतना लंबा अनुभव हमारे अस्पतालों में प्राप्त किया है और ये निर्णय जनहित में लिया गया कि मरीजों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।
0: अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 500 निसंवर्गीय पदों के सापेक्ष पीएमएचएस संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का पुनर्नियोजन किया जाएगा। मेरा युवा भारत उत्तर प्रदेश राज्य के निदेशक गोपेश पांडे ने आज लखनऊ में बताया कि भारत की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रैंड नेशनल कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या व बलिया के तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क होंगे 4 लेन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 10 स्टेशन परियोजना में शामिल। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का वाराणसी में शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। कहा, हर राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। और यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में बदलाव। विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा खुद लेगा बोर्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: मीडियम वेव 4.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पॉश एक्ट 2013, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रही हैं पूनम पांडे और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
3: नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाएं बराबर से काम करती हैं और सभी ऑफिसेज में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होती है, तो एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी 2013 में, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कहते हैं। इसी पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रखा है पूनम पांडे जी को। आप हैं हाईकोर्ट लखनऊ में एडवोकेट। पूनम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
4: धन्यवाद अतीश जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और इतने अच्छे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जिसकी आवश्यकता हमारे सभी श्रोताओं को होगी। मुझे आशा है कि मैं सभी के जितने भी क्वेरीज अगर होंगी उनके दिमाग में, तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाऊंगी।
3: तो पूनम जी, शुरुआत करते हैं इस एक्ट से। पॉश एक्ट क्या है?
4: पॉश एक्ट की बात करें तो कभी भी कोई एक्ट जब बनता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है। उस पे ना जाके हम सीधे आपको ये बताना चाहेंगे कि एक 2012 में हमने एक निर्भया केस, हम सभी ने केस को सुना था, जिसको मद्देनजर रखते हुए एक एक्ट बना, पॉश एक्ट 2013, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और उस एक्ट के तहत हम बेसिकली क्या करते हैं, महिलाओं को उनका जो कार्य क्षेत्र होता है, वर्क प्लेस होता है, उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे रोकथाम करने के लिए ये एक्ट काम करता है। तो अभी हम बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं का जो वर्क प्लेस पे होता है, उसमें उनको किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस तरीके से वो कंप्लेन कर सकते हैं, किस किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकल सकता है, इस पे ही इस एक्ट के बारे में बात होती है।
3: तो इसमें कार्यस्थल जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं?
4: कार्यस्थल की परिभाषा की बात करें तो कोई भी जगह जहां महिलाएं कार्य करने जा रही हो, उसको हम कार्यस्थल कह सकते हैं। कार्यस्थल की परिभाषा में अगर हम इससे देखें तो वो महिलाएं जो जनरली नगर निगम में काम कर रही हैं, जो महिलाएं सड़क पे सफाई कर्मी हैं, वो भी किसी संस्था के तहत वहाँ सफाई करने को आती हैं, सफाई करने वाली जो प्लेस है वो उनका कार्यस्थल होगा। कहने का मतलब ये है कि इवन कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो महिलाएं किसी ऑफिस में जाके काम करती हैं,
3: इवन जो घर में लोग काम करने आती हैं वो भी,
4: जी इवन जो महिलाएं घर पे काम करने के लिए आती हैं वो भी उनका कार्यस्थल ही कहलाता है, और उनके लिए भी प्रोविजंस इस एक्ट के तहत बने हुए हैं।
3: जो यौन उत्पीड़न शब्द है, इसके दायरे में क्या क्या है?
4: यौन उत्पीड़न शब्द के दायरे में आता है महिला जो किसी भी कार्यस्थल है जहाँ पे वो कार्य कर रही है, वो कैसा महसूस करती है, कैसा क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर किसी भी एक्ट का एक पुरुष के आता है, उसे हम बेसिकली इसकी परिभाषित करते हैं। एक पुरुष के कहे गए शब्द, एक पुरुष का जो भी जेस्चर होता है, उस महिला पे क्या इम्पैक्ट डालता है, यही इस एक्ट को परिभाषित करता है।
3: तो जैसे हमने सुना है कि एक ऑफिस में आप किसी महिला को कुछ सेकंड का समय होता है कि देखेंगे, तो वो उसके दायरे में आ जाता है?
4: देखिए, सेकंड की कोई बात नहीं होती है इसमें। इसमें बात ऐसी होती है कि पुरुष किस तरीके से देख रहा है उस महिला को, और वो महिला उसके देखने को कैसा सेंस करती है, यही इस एक्ट की परिभाषा है। हम इसमें किसी भी टाइम को बॉन्ड नहीं कर सकते हैं।
3: इसमें टिप्पणी जो कर देते हैं कभी कभी पुरुष,
4: जी इसमें टिप्पणी की बात करें तो एक पुरुष अगर एक महिला से बात कर रहा है, और जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में जीते आ रहे हैं, पुरुष और महिला एक साथ वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो हम लोग यही बात करेंगे कि जब हम साथ में काम करते हैं तो हम एक दूसरे के कलीग्स होते हैं, और हमारा एक दूसरे से बातचीत करने का एक दायरा होता है, और वो दायरा डिसाइड कौन करता है, वो दायरा डिसाइड करता है किसी भी महिला जो आपकी बात को सुन रही है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है।

0: पूरन जी, बात आती है जो यौन उत्पीड़न, तो उसके दायरे में क्या क्या आता है किसी ऑफिस में?
1: सी, यौन उत्पीड़न की बात करें किसी ऑफिस में, तो हम लोग चूंकि बार बार सिर्फ एक बार की बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कैसा आता है? इम्पैक्ट का मतलब सीधा ये निकल रहा है कि जब हम किसी जैसे पुरुष कभी भी अपनी महिला कलीग से कोई बात करते हैं, तो उनके बात करने में, उनके जो भी वो टिप्पणी दे रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट उस महिला कलीग पे कैसा आता है। एग्जाम्पल इसमें ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक पुरुष अगर एक अपनी महिला कलीग से ये बोलता है कि आज आपने गुलाबी रंग का जो सूट पहना है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप पे, जिस महिला से वो पुरुष ये बात कह रहे हैं उस महिला को ये बात कैसी लगी,
0: ऑफेंड फील कर रही है,
1: ऑफेंड फील कर रही है या नहीं कर रही है, या कहते समय का उनका जेस्चर या उस समय की सिचुएशन, ये सारी चीजें उस पे बेस करती हैं। ये पॉश एक्ट बेसिकली इसी को दर्शाता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट उस महिला पे कैसा आ रहा है।
0: तो कभी कभी टिप्पणी निकल जाती है मुंह से
1: जी,
0: उसका क्या असर होता है?
1: हाँ, उसे हम कंप्लीटली पॉश एक्ट में कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा की गई टिप्पणी जरूरी नहीं है कि उस महिला को बहुत साधारण सी कोई बोलचाल की भाषा लगे, वो उससे ऑफेंड भी फील कर सकती है। तो आपका नजरिया क्या है और उस नजरिए का इम्पैक्ट क्या है उस महिला, यही मैटर करता है पॉश एक्ट में कम्प्लीटली।
0: तो ऑफिसर्स में अक्सर जो एक शब्द आता है सेक्सुअल फेवर,
1: सेक्सुअल फेवर की बात करें, और अगर हम बात कर रहे हैं पॉश एक्ट की, तो पॉश एक्ट तो बना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: यहाँ तो
0: जी
1: हम बात करेंगे कि फेवर पुरुष ले रहा है महिला से, इस एक्ट की बात तो हम तभी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई फाइलिंग होनी है करके लाइए, अगर पुरुष ये कह देता है कि चलो ठीक है ऐसा करना, शाम को मिलते हैं और फिर देखते हैं कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उस शाम के मिलने में आपने क्या जेस्चर दिया,
0: अच्छा,
1: आप किस तरीके से अपनी भावभंगिमा दिखा रहे हैं, और उसका उस जेस्चर का इम्पैक्ट उस महिला पे कैसा आ रहा है, वो कैसा महसूस कर रही है, क्या वो सेफ महसूस कर रही है आपकी इस बात को सुनके, अभी समय की कमी होने के कारण शाम को बुलाया है या किसी और मकसद से शाम को बुलाया है।
0: तो
1: ये
0: पूनम जी, जहां तक बात मुझे समझ में आ रही है
1: जी
0: कि जो इसका जो मैक्सिमम जो जिम्मेदारी पड़ती है वो महिला की है कि वो उस चीज को कैसे टैकल करती, कैसे लेती,
1: नहीं,
0: वो
1: ये
0: स्वीकार करती है या नहीं करती है?
1: नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। स्वीकार करना तो एक सेकेंडरी चीज हो गई, बट प्राइमरी चीज तो उस पे इम्पैक्ट हो गया। तो इस एक्ट के थ्रू बात करते हैं तो इम्पैक्ट मैटर्स, और वही प्राइमरी चीज है। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि उस महिला पे इम्पैक्ट इसका ऐसा नहीं पड़ना चाहिए कि आप कोई सेक्सुअल फेवर या किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं।
0: तो फिर ऑफिसर्स में इस एक्ट के अंतर्गत कुछ बचाव के तरीके होंगे, जैसे कोई समिति बने?
1: हम अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर तरीके की, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित की जाती है, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में मेंबर्स होती हैं, और वहां की जो सबसे सीनियर महिला मेंबर होती हैं वो उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं। साथ में दो और महिलाएं होनी चाहिए, उसमें एक पुरुष भी होने चाहिए इस कमेटी में। एक कोई मेंबर होते हैं जो बाहर से भी आने चाहिए, जो आपके बायस ना हो आपके डिपार्टमेंट को।
0: नहीं, मुझे तो लगता है कि जानकार व्यक्ति हो तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, ये तो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, बेसिक रैदर रिक्वायरमेंट है कि कोई भी व्यक्ति जो जानकार होगा वो ही जस्टिफिकेशन दे पाएगा, वो ही जस्टिस दे पाएगा, इसीलिए जानकार व्यक्ति का होना जरूरी है। तो जब भी हम इंटरनल कमेटी की बात करें तो उसमें जो भी मेंबर बाहर से आए, ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि वो एडवोकेट हो या उन्हें लॉ की कंप्लीट जानकारी हो।
0: तो अगर ऑफिसर्स में ऐसा कुछ होता है तो इस आईसीसी के पास कोई महिला कितने दिन तक शिकायत कर सकती, मान लीजिए कोई कृत्य हुआ तो वो तुरंत करे या कितने दिन?
1: हाँ, उनके पास 30 डेज का टाइम होता है, रैदर कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें 90 डेज का भी कर सकते हैं, और कुछ विषम ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें उसके 90 डेज क्रॉस हो जाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो परिस्थितियां हैं वो असामान्य होनी चाहिए और उनके कंप्लीट प्रूफ होने चाहिए।
0: प्रूफ तो अगर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो एक कमरे में हो रहा है, बंद कमरे, तो प्रूफ कहाँ से मिलेगा हमें?
1: नहीं, बंद कमरे की बात का ये है, जैसे हम लोग बात करते हैं अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए आप इस एक्ट में जाना चाह रहे हैं, तो आपने एक एक्ट किसी पे लगाया है तो आप कुछ कुछ तो बेसिस उसका देंगे ही ना। एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक महिला अगर कोई एक्ट लगा रही है, आईसीसी को बोल रही है कि ये कंप्लेन

0: लिखी है तो कोई तो बेस होगा ना उसका, उसी
1: अच्छा
0: बेस के तहत ही जाते हैं। प्रूफ की जो बात हम करते हैं, जैसे ये उन कंडीशंस की बात हो गई जब कई बार ऐसा होता है कि ये तो एक साधारण तरीके से टिप्पणी घूरना देखना की बात हो गई, कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं हो पाती रह पाती हैं, इतनी ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो जाती हैं आपके किसी किसी पुरुष के किसी जेस्चर से किसी एक्शन से, वो मेंटली जब वो इस कंडीशन में नहीं रह जाती हैं कि वो कंप्लेन कर सके। इस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें अगर आपका जब टाइम पीरियड बीत चुका होता है उस टाइम के बाद भी आप जाते हैं, फिर भी कंप्लेन एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन कंप्लेन एक्सेप्ट करने के लिए आपका मेंटली डिस्टर्ब होना प्रूफ के तौर पे वहां लगना चाहिए।
1: नहीं, या इसमें कोई उस महिला का दूसरा कलीग वो भी कर सकता है कि आईसीसी भी शिकायत
0: जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, और इंक्लूडिंग दैट कि
1: फॉर दैट
0: आईसीसी
1: वुमन?
0: फॉर दैट वुमेन, कोई भी कलीग कर सकता है। अगर एक कलीग को ये पता चलता है कि उसका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बन रहा है और वो नहीं जा पा रही है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जा पाने में संकोच करती हैं, जाना चाहती हैं, उस समय पे उनके कोई भी कलीग उनका साथ दे सकते हैं और वो खुद से कंप्लेन अपनी तरफ से कर सकते हैं। बस उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि महिला की कंसेंट जरूरी हो, रिटन कंसेंट होनी चाहिए।
1: तो इसमें एडवोकेट या वकील तो नहीं आएंगे फिर इसमें?
0: नहीं, इसमें एडवोकेट वकील जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें सीधा एक आईसीसी गठित हो चुकी है, आपके विभाग की ऑर्गेनाइजेशन की आईसीसी होती है, जिस आईसीसी में जाना है आपको, एडवोकेट का कोई रोल नहीं होता है, कोई भी इसमें कंप्लेन कर सकता है। महिला डायरेक्ट नहीं कर पा रही है तो उनके बिहाफ पे कोई उनके कलीग उनके रिलेटिव कोई भी कर सकता
1: तो
0: है।
1: इसमें कुछ सजा के प्रावधान भी हैं?
0: हाँ, इसमें सजा के प्रावधान है, ऑर्गेनाइजेशन अगर गिल्टी मानती है उस पुरुष को तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जैसा भी उस समय पे होता है, पहले तो जो कंप्लेनेंट होता है उसकी कंसेंट भी मैटर करती है वहां पे कि जो पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट से वो अग्री कर रही है, जो कंप्लेनेंट है वो अग्री कर रही है। सेकेंडरी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट सस्पेंशन का हो सकता है, ट्रांसफर का हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज का हो सकता है और फाइनेंशियल पेनाल्टी का भी हो सकता है।
1: जेल भी है क्या इसमें?
0: नहीं, आईसीसी के पास राइट नहीं है, आपको जेल का रिकमेंडेशन का राइट आईसीसी के पास नहीं होता है, आईसीसी मैक्सिमम सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन तक का है।
1: तो जो ये आईसीसी है, ये विशाखा,
0: शाखा गाइडलाइन बनी थी 2013 एक्ट, पॉश एक्ट 2013 की बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस बनी थी और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हम पॉश एक्ट की बात करते हैं।
1: तो जैसे कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं कि जहां पे संख्या नहीं है कि ये आईसीसी बन सके, तो
0: जी
1: क्या मदद कहीं और दूसरे ऑफिसेज से मिली जा सकती है?
0: हाँ जी, जहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉय से कम है तो एक लोकल कमेटी होती है, इंटरनल लोकल कमेटी होती है, उस कमेटी में आप कंप्लेन करवा सकते हैं उसकी, मतलब कोई भी अग्रीव महिला जो होगी वो उस कमेटी में
1: एलसीसी
0: कंप्लेन कर सकती
1: मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला
0: है। हाँ
1: स्तर
0: जी,
1: पर?
0: वो जिला स्तर, वो डीएम के यहाँ पे बनी हुई कमेटी होती है, उसमें
1: अच्छा
0: कंप्लेन हो
1: अच्छा
0: सकती है। और इसके दायरे में अगर हम बोले, जैसे कई बार ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जो नहीं जानते हैं लोग, हम लोग घरेलू घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं घरों में काम करती हैं उनकी मदद भी होती है लोकल कमेटी में, वो वहां पे भी कंप्लेन कर सकती हैं। अगर जिन घरों में वो काम कर रही हैं अगर उनके साथ भी कोई उन्हें महसूस होता है कि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कृत्य हुआ है तो वो उस लोकल कमेटी में कंप्लेन कर सकती हैं। देखिए, जब क्या होता है, जब भी कोई कमेटी बनती है तो कमेटी जनरली इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अग्रीव्ड जो हो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी क्वेरीज को फोन पे भी सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इट्स नॉट कि आपको बार बार परेशान किया जाएगा।
1: ऑनलाइन का भी सिस्टम है क्या?
0: हाँ, ऑनलाइन का भी सिस्टम है बिल्कुल, शी बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसका कंप्लेन होता है और वो खुद आपको वहां से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, जो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपकी परेशानी का सलूशन वहां से
1: क्या
0: निकालेंगे।
1: इसका मिसयूज भी कभी आपने सुना है?
0: फॉल्स कंप्लेन में जो अग्रीव्ड विमेन जो कंप्लेनेंट होते हैं उन कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस एक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग जागरूक हो जाएं और इसका गलत इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि वो उनके लिए नहीं होता है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि कई बार कंप्लेन्स फॉल्स होती हैं।
1: तो पूरम जी, तो हम अपनी बातचीत को यहीं रोकते हैं और आप हमारे स्टूडियोज चल के आए और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी, बहुत अच्छा विषय आपने मुझे दिया बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि जब भी मौका मिलेगा मैं श्रोताओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा अपडेट करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे पॉश एक्ट 2013, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रही थी पूनम पांडे और भेंटकर्ता थे आतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम।

श्रोताओं आइए इस कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और साशा तिरुपति की आवाजों में। फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड। गीत और संगीत है तनिष्क बागची का।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं अरमान मलिक का गाया हुआ। फिल्म का नाम है अजहर। गीत को लिखा रश्मि विराग ने और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

बत्ते गए मीटर चालू। अभी आपने सुना इस फिल्म का गाना, आवाज थी राहत फतेह अली खान की। और श्रोताओं, इसी के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सबरस।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फाल्गुनी पाठक के गाए हुए कुछ नॉन फिल्मी गीत। आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक को। आइए सुनते हैं इनका गाया हुआ अगला नॉन फिल्मी गाना।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है खेल खेल में। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

श्रोताओं, ये गीत है फिल्म जवानी दीवानी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे आपने सुना फिल्म रफू चक्कर से। आवाजें थी शैलेंद्र सिंह और कंचन की। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी

0: जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: श्रोताओं, ये गजल है मनहर उदास की गाई हुई।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद रात 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। उसके बाद 9 बजे प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार। आइए पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत

0: ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिशानायक से मुलाकात कर

0: भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसा नायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
1: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसी मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं।

0: हैं और इनसे बाब अल मंदीब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait.

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी मस्ताना।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म है बॉबी।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे आपने सुना फिल्म गाइड से। आवाज थी मोहम्मद रफी की। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी ओबरा है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ

0: दो मेहमान जुड़ रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू,
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
2: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ हैं जिनमें की प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में जो आपने बताया GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले अनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
0: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
3: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो। आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइट्री डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8 9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो मां सोच

0: है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है. गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए. उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है. बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो. ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है. माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है.
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है. तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा. तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा.
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम. तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए. दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती है, वो चाय पिलाएंगी, गुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है शहद पिलाना है, क्योंकि रस में पूरे करना ज्यादा जरूरी है. हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा. और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी. अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है. एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है. तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ. तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दे कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो माँ की जो

0: मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे और जिन बच्चों को पहले दो साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है आयरन की कमी होती है वो बच्चों की आईक्यू पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी हम सारे माँ बाप हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आईक्यू बहुत बढ़िया हो नीट जेई निकाले बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके आईक्यू पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया. RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को. आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है. और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक ओपीडी होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का. बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं. तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है. और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा. तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से.
1: जी बिल्कुल. पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है. डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है.
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है. जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ. और जैसा आपने कहा कि अब हम नौवां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं. इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है. पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है. और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है. और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो हर महीने VHSND डेज मनाए जाते हैं. तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद. तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके. जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है एस्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना। जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए, तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिस्ट हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिस्ट हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिस्ट हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें, बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं
1: जी।
0: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है
1: जी। डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
2: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें।

0: जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा। पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें। एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओ को लगता है कि हाँ, उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी,
1: जी
2: उसके बाद तो सब कुछ
1: बिल्कुल
2: पजल
1: ठीक
2: की
1: कह
2: तरह
1: रही हैं।
2: फिट हो जाएगा।
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए गीत से। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई अनु मलिक ने और फिल्म है मैं हूं ना।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं धड़कन फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत को लिखा समीर ने और इसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी उबरा से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। समय हुआ है रात्रि के 10:12:36। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और फिल्म है मैं प्रेम की दीवानी हूं।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और धुन है जतिन ललित की।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के गाए हुए इस गीत के साथ ही रसधारा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरे प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया हुआ राग मियां का मल्हार। तो आइए सुनते हैं बांसुरी वादन, कलाकार पंडित हरे प्रसाद चौरसिया।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया हुआ राग मियां का मल्हार। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर बाद आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया।

0: बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।